0: বন্দনা শুনিলে। আজিৰ বন্দনা সজোৱা হ'ল উদেষ্ণা ভাৰ্গৱী কণ্ঠৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত বৰগীত, আদিত্যনাথ আৰু সংগীৰবিন্দৰ কণ্ঠৰ চিয়া গীত, নৰেন দাসৰ কণ্ঠৰ লোকগীত, নৃপেন চন্দ্ৰ দাস আৰু সংগীসকলৰ কণ্ঠৰ টোকাৰী গীত আৰু সুস্মিতা ভৰদ্বাজৰ কণ্ঠৰ ভজনেৰে। আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ খন্তেক পাছতে 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की दुर्घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोच

0: इन संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमरीका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरला, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism, cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisors meeting, held under India's chairship of the grouping, led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of Indian nationals in the accident at Ras Lufan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
2: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
1: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with UAE in recent several years has seen a major upswing in which the defense partnership also plays an important role. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries and the Global South. Ms. Sitharaman stressed that coordinated global action is essential to address these challenges. Highlighting India's economic progress, the finance minister said that the country's growth is primarily driven by domestic demand, supported by a largely market-determined exchange rate. Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. U.S. Secretary of State Marco Rubio said lasting peace and stability in West Asia cannot be achieved as long as Iranian-backed proxy groups continue launching attacks and engaging in militant activities across the region. Speaking to reporters upon his arrival in Abu Dhabi as part of his visit to the Persian Gulf region, Rubio emphasized that discussions over a Lebanon ceasefire are separate from ongoing negotiations with Iran. He added that he had recently spoken with Lebanese President Joseph Aoun alongside U.S. Vice President J.D. Vance and that the U.S. officials were currently engaged on the ground in Lebanon. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in United States. The 41-year-old Cristiano Ronaldo scored 2 goals to help Portugal roll to a 5-0 win over Uzbekistan. Ronaldo became the first player to score in 6 different World Cup tournaments with his goals, adding another impressive accomplishment to his storied career. He was named Man of the Match. And that is the end of this news bulletin.
3: মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টজত আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান পৰিস্থিতি।

0: অগ্নিযুগৰ গান।
1: অগ্নিযুগৰ পিৰিঙতে মই নতুন অসম গঢ়িম।
2: ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ উপলক্ষে আমাৰ দৈনিক আয়োজন অগ্নিযুগৰ গান।
1: ও মোৰ প্ৰিয় জনগণ, মই গাওঁ তোমাৰ এই গান।
0: প্ৰতি পুৱা 8:15 পৰা 8:25 সুধা কণ্ঠৰ গীত,
2: বিবিধ ভাৰতে গুৱাহাটীত অগ্নিযুগৰ গান।
3: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়, পুৱাৰ বাতৰিৰ সৈতে মই জুলি শৰ্মা বৰুৱা। ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীসভাই ভূমি ৰূপান্তৰ বিধি অধিক সৰল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে অসম ভূমি পুনৰ শ্ৰেণীভুক্তকৰণ তথা হস্তান্তৰ নিয়ন্ত্ৰণ সংশোধনী বিধেয়ক 2026 অনুমোদন জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি লোকসেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকৰ আগত কয় যে ৰাজ্যত ঔদ্যোগিক আৰু বাণিজ্যিক বিনিয়োগত উদগনি যোগোৱাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰস্তুত কৰা এই বিধেয়কখন বিধানসভাৰ আসন্ন বাজেট অধিৱেশনত উত্থাপন কৰা হ'ব। ইয়াৰ অধীনত ক্ষুদ্ৰ খাদী উদ্যোগ আৰু সৌৰ শক্তি প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ভূমি ৰূপান্তৰৰ অনুমতি লাভ কৰিব পৰা যাব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে।
4: কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। আগন্তুক অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি কেইবাখনো নতুন আইন আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে। আমাৰ অসমত এখন আইন আছে, আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড ৰেগুলেশ্যন অফ ৰিক্লাছিফিকেশ্যন এণ্ড ট্ৰেন্সফাৰ ফৰ নন এগ্ৰিকালচাৰেল পাৰ্পাজ। এই অনুসৰি কৃষি মাটি আমি নন এগ্ৰিকালচাৰেল পাৰ্পাছলৈকে যদি ৰূপান্তৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে জিলা আয়ুক্তৰ অনুমতি নিশ্চিতভাৱে ল'ব লাগে।
3: ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে সুলভ মূল্য দোকানসমূহৰ কাম কাজ নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে অব্যাহত ৰখাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকলক সুকলমে খাদ্য বিতৰণৰ বাবে ৰাজ্যৰ সকলো সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বৈধতাৰ সময়সীমা 30 জুনৰ পৰিৱৰ্তে 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে বৈঠকত অসম চাহ নিগম লিমিটেডক 9,75,00,000 টকাৰ পুঁজি মুকলি কৰি দিয়াত অনুমোদন দিয়া হৈছে। এই পুঁজি অসম চাহ নিগম লিমিটেডে কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলৰ স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মন্ত্ৰীসভাই গ্ৰামাঞ্চলত ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে ন্যূনতম ভূমিৰ প্ৰয়োজনীয়তা 60 বিঘাৰ পৰা 35 বিঘালৈ আৰু চহৰাঞ্চলৰ 30 বিঘাৰ পৰা 21 বিঘালৈ হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অনুমোদন দিছে। তেওঁ কয় যে নিৰ্ধাৰিত শৈক্ষিক আৰু সুৰক্ষাৰ মান নিশ্চিত কৰাৰ লগতে বিদ্যালয় শিক্ষাখণ্ডত প্ৰস্তাৱৰ অধীনত চৰ অঞ্চলৰ বাবে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰয়োজনীয় ন্যূনতম বিল্ড আপ এলেকা 1 বিঘা আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ বাবে 3 বিঘা কৰা হৈছে। এনে বিদ্যালয়ত অনাময় ব্যৱস্থা, খোৱাপানী, চাৰিসীমাৰ দেৱাল, দুৰ্যোগ প্ৰশমন তথা দিব্যাংগসকলৰ বাবে অনুকূল ব্যৱস্থা বাধ্যতামূলক হ'ব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৈঠকত ৰাজ্যৰ হোমষ্টেসমূহৰ পঞ্জীয়ন সন্দৰ্ভত কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি সদৰি কৰে। হোমষ্টেসমূহে 3 বছৰ মূৰে মূৰে পঞ্জীয়ন নৱীকৰণ কৰিব লাগিব আৰু কোঠাৰ সংখ্যা 6-8 বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব বুলি বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। এটা পৰ্টেলত এই পঞ্জীকৰণ নৱীকৰণ কৰিব লাগিব। তেওঁ লগতে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসম ভ্ৰমণ বাতিল কৰা হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে। ডঃ শৰ্মাই কয় যে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰ সচিব বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে এই কথা ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ভাস্কৰ্য শিল্পী আৰু কলা নিৰ্দেশক নুৰুদ্দিন আহমেদ, সংগীত শিল্পী পখিলা লেকথেপি আৰু যোগেশ দেউৰীক কালি পদ্মশ্ৰীৰে সন্মানিত কৰা হয়। কবীন্দ্ৰ পুৰকায়স্থক মৰণোত্তৰভাৱে পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে বিভূষিত কৰা হয়। নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত কালি চলিত বৰ্ষৰ পদ্ম সন্মান প্ৰদান কাৰ্যসূচীত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে তেওঁলোকক পদ্মশ্ৰী সন্মান প্ৰদান কৰে। এই অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বন্দৰ জাহাজ চলাচল আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। দক্ষিণ শালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ হাজিৰহাট আৰু গোটাবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাত বিগত প্ৰায় 20 দিন ধৰি অব্যাহত থকা বৰলুইটৰ খহনীয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ফলত 2037 নম্বৰ বৰবালু এল পি স্কুল স্থানান্তৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইয়াৰ উপৰি 115 নম্বৰ বৰবালু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। আনহাতে গোটাবাৰী গাঁৱত 21টা পৰিয়াল, বৰাইতাৰী 35টা পৰিয়াল আৰু বৰবালু গাঁৱত 71টা পৰিয়ালসহ মুঠ 127টা পৰিয়াল খহনীয়া কবলত পৰি নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। ইফালে খহনীয়া তীব্ৰতা ক্ৰমাৎ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগে অস্থায়ীভাৱে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। অম্বুবাচী উপলক্ষে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধামলৈ দেশ বিদেশৰ অগণন ভক্তৰ সমাগম হৈছে। সোমবাৰ নিশা প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হয়। এই দিনকেইটাত কামাখ্যা মন্দিৰৰ দুৱাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ থাকিব। 26 জুনৰ পুৱা অম্বুবাচী নিবৃত্তিৰ পাছত মন্দিৰৰ দুৱাৰ ভক্তৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
5: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
6: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
7: रासलफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
5: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
7: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
5: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
7: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
5: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
8: दोनों पक्ष 24 जुलाई से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी तारीख को व्यापारिक साझेदारों से होने वाले आयात पर अमेरिका का अस्थायी 10% टैरिफ समाप्त होने वाला है। 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक टैरिफ को रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने सभी देशों पर 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया था। द्विपक्षीय व्यापार तनाव कम होने के बाद अमेरिका ने ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया और पहले से लगे 25% पेनल्टी टैरिफ को हटा दिया। भारत ने भी अमेरिका के कई औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने या समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था, जिनमें सूखे डिस्टिलर अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं। रिशु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
5: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। एक रिपोर्ट।
9: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सभी देशों की घरेलू जरूरतें अलग अलग होती हैं और लगातार बने रहने वाले वैश्विक असंतुलन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की विकास दर मुख्य रूप से घरेलू मांग के कारण है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और मध्यम अवधि में इसके सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों ने हिस्सा लिया। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे G7 देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रतिनिधि शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मॉनसून के कमजोर रहने की आशंका है।
10: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
5: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कोचिंग संस्थानों के नियमन को मजबूत करने और अवैध कोचिंग सेंटर्स के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे राज्य में आग से बचाव के उपायों की जांच मिशन मोड में की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है। खबर को शीर्षक दिया है दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
5: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। कहा, पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders. Delegates exchanged views on issues ranging from energy and food security to climate-related instability and the misuse of emerging technologies by terrorist organizations. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Doval stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
13: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threats for us.
12: Prime Minister Narendra Modi received a telephone call from the Emir of Qatar, Sheikh Tamam bin Hamad Al Thani. He expressed condolences over the loss of lives of 12 Indian nationals in the accident at Ras Laffan Industrial City in Qatar on Sunday and conveyed his wishes for the speedy recovery of those injured. Mr. Modi thanked the Qatari leader for his words of sympathy for the affected families and appreciated the prompt medical assistance extended to the injured. The two leaders also reaffirmed their commitment to ensuring the well-being and safety of their citizens and reiterated their solidarity and support for each other. During discussions on the situation in West Asia, Prime Minister Modi appreciated Qatar's constructive role in the ongoing peace efforts. India has strongly criticized Pakistani Defense Minister Khwaja Asif's remarks over the situation in Pakistan-occupied Kashmir, saying these remarks are desperate attempts by the neighboring country to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. Addressing media in New Delhi, Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, New Delhi categorically rejects these fabricated claims with the contempt they deserve.
14: The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses.
12: On India-UAE defense partnership, the spokesperson said India's relationship with the UAE in recent several years has seen a major upswing.
14: Our relationship with United Arab Emirates several years has actually seen a major upswing. In that upswing, the defense partnership also plays an important role. That also has strengthened and deepened. So that is where we are in our defense partnership with UAE.
12: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has called for stronger multilateral cooperation to build resilient economies, accelerate sustainable development, and ensure inclusive growth. Addressing the Global Convergence for Growth Summit virtually in New Delhi yesterday, she said that while prosperity and challenges are shared in an interconnected world, the consequences of conflicts and uncertainty fall disproportionately on developing countries and the Global South. Ms. Sitharaman stressed that coordinated global action is essential to address these challenges. Highlighting India's economic progress, the finance minister said the country's growth is primarily driven by domestic demand, supported by a largely market-determined exchange rate. She added that India continues to be among the world's fastest-growing major economies, with GDP growth projected to remain robust at around 7% over the medium term. The summit was chaired by French President Emmanuel Macron. Vice Chairperson of Niti Aayog Dr. Ashok Kumar Lahiri has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch Quarterly Report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. Talking about the situation in West Asia, Dr. Lahiri said that the crisis was temporary and expressed hope that soon peace will prevail in the world.
15: It was a short-term problem. I hope the war is going to end, peace will prevail, and the impact was in terms of energy prices and transportation cost. Freight rates went up. There was disruption. You'll find even in these figures somewhere, prices went up, but quantities were not available, so there was a problem. I think it was a temporary supply shock.
12: India's critical mineral mission has gained significant momentum with the successful auction of 56 critical and strategic mineral blocks and 11 exploration license blocks by the Ministry of Mines. The Ministry has successfully auctioned 10 critical and strategic mineral blocks under the 7th tranche of auctions, taking the total number of such blocks auctioned to 56 out of 88 blocks offered so far, with a success rate of over 63%. The Ministry informed that for the first time, critical mineral blocks in Gujarat, Uttarakhand and Telangana were auctioned by the centre. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and download the News on AIR app. India and the United States opened high-level trade talks in New Delhi to salvage and recalibrate a proposed bilateral trade agreement after changes in U.S. tariff policy disrupted a framework negotiated earlier this year. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met United States Trade Representative Jamison Greer and U.S. Ambassador to India Sergio Gore in New Delhi yesterday. More from our correspondent.
11: Both sides are aiming to conclude an interim trade pact before 24th July when Washington's temporary 10% tariff on imports from trading partners is set to expire. On February 20, the US Supreme Court struck down sweeping tariffs. This led the US administration to impose a temporary 10% tariff under Section 122 of the Trade Act on all countries for 150 days starting February 24, which is due to expire on July 24. Following a de-escalation in bilateral trade tensions, the US reduced the reciprocal tariff on most Indian goods to 18% and removed a previous 25% penalty tariff. India had proposed reducing or eliminating tariffs on a range of US industrial and agricultural goods, including dried distillers' grains, red sorghum for animal feed, tree nuts, fruits, soybean, oil, wine and spirits, among others. Komudi Parekh, Akashvani News, Delhi.
12: U.S. President Donald Trump claims

0: জয়প্ৰকাশ মেধিৰ কণ্ঠৰ গীতটি শুনিলে। ইয়াৰ লগে লগে অন্ত পৰিল আজিৰ গীতিমালিকাৰ গীত অনুষ্ঠানটিৰ।
1: কাহিনী পঢ়ি আপুনি নিশ্চয় ভাল পায়, উপন্যাস বা গল্পৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিশ্চয় আগ্ৰহ আছে। বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটীয়ে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছে উপন্যাস পাঠৰ এটি মনোৰম অনুষ্ঠান। প্ৰতি পুৱা 9 বজাত এতিয়াৰ পৰা শুনিবলৈ পাব ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠৰ অনুষ্ঠান। ধাৰাবাহিক উপন্যাস পাঠ বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটীত প্ৰতি পুৱা 9 বজাত FM-ৰ 100.8 MHz।
2: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক অগণিত শ্রোতার কাষ চাপক।
3: Our voice gets you heard everywhere.
2: বিজ্ঞাপন জনসাধারণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
3: 6900453528।
2: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ সৈতে।
0: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত আৰু 12:05 ইংৰাজীত আৰু 12:10 পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান শুনিবলৈ পাব।
4: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই কনকলতা। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी

0: टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. India strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at the United Nations Forum, accusing Islamabad of politicizing the platform, also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased, as behooves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir. He added that the Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that the rollout of Passport Seva Program 2.0, introduction of chip-enabled e-passports, opening of new Passport Seva Kendras and Post Office Passport Seva Kendras and record levels of passport issuance are enhancing ease of travel, expanding access to global opportunities and empowering citizens. In a social media post, the minister extended greetings to all passport authorities in India and abroad on the occasion of the 14th Passport Seva Divas. Dr. Jaishankar also reaffirmed the government's commitment to keep making passport services delivery faster, more transparent and accessible, guided by the vision of Surakshit Passport, Sugam Seva and Sashakt Nagrik. National security advisors and senior security officials from the BRICS nations call for stronger cooperation to address the widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. Speaking at the meeting, National Security Advisor Ajit Dobhal stressed the need for collective deliberation and cooperation among BRICS nations to address the emerging security risks and evolving forms of terrorism in an increasingly digitized world.
3: We need to be cognizant of the new security threats and challenges. Non-traditional threats have transcended national borders and have developed defeat systems against conventional responses. Innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism, cyber threats in a world which is getting increasingly digitized, they all constitute an important threat for us.
2: Vice Chairperson of Niti Aayog, Dr. Ashok Kumar Lahiri, has said that the total trade of India has grown by 5.4% in the last quarter. He said this while releasing the latest edition of the Trade Watch quarterly report in New Delhi. Dr. Lahiri added that India's exports reached $1.84 trillion and imports grew by 6.5% in the last quarter. The Enforcement Directorate, ED, is conducting search operations at five locations in Delhi in connection with a money laundering case linked to 3,000 kilogram Mundra port drug import case. ED officials said that the searches have been conducted at the premises linked to Harpreet Singh Talwar, Samshuddin and the associates. The officials added that the drug money was allegedly invested in nightclubs in Delhi. Harpreet Singh Talwar had earlier been arrested by the National Investigation Agency, NIA, in the same case and was recently released on bail. Further investigation is underway. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today inaugurated the commencement of construction work at the Central Sector 38 Metro Station for the Central Vista Corridor in the national capital. Speaking to the media, the minister described the moment as historic and highlighted that the project will significantly streamline daily transit for government employees and all professionals. The Indian Meteorological Department has said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into parts of Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh during the next 2 days. It forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Konkan and Goa over the next 3 days. Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Telangana are expected to witness heavy rainfall today. In the FIFA World Cup 2026, Portugal crushed Uzbekistan by 5-0 in the Group K at Houston in the United States. The 41-year-old Cristiano Ronaldo scored 2 goals to help Portugal roll to a 5-0 win over Uzbekistan. Ronaldo became the first player to score in 6 different World Cup tournaments, with his goals adding another impressive accomplishment to his storied career. And that is the end of this news bulletin.

सैनिक भाइयों, आइए मैं आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देती हूँ। आज बुधवार है। आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत 12:12 पर, 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर फिल्मी नग में और 1:05

1:10 पर कार्यक्रम तरंग, 1:40 पर कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, 2:00 मिड डे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम प्रीत लड़ी और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत होगा दिन के 3:00। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना हिमेश रेशमिया की आवाज में। फिल्म का नाम है हेट स्टोरी 4।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना सफाकत अली की आवाज में। फिल्म का नाम है राजट्री।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे सिर्फ तुम फिल्म से गीत, अनुराधा और हरिहरन की आवाजों में। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सैनिक भाई आइए मैं आपको कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देती हूँ। कल गुरुवार है। कल का पहला कार्यक्रम 12:12 पर फिल्म संगीत, 12:30 पर कार्यक्रम आज का गीत, 12:38 पर एक ही कलाकार के गीत, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

1:10 पर स्वर छाया, 1:40 पर कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, 2:00 मिडडे न्यूज, 2:15 पर हिंदी में समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम गीत रंगीले। और इसी के साथ कार्यक्रम का अंत होगा दिन के 3:00। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है दिल दिया दर्द लिया।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गाना जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। फिल्म का नाम है साथ साथ।

0: इसी गीत के साथ होता है अंत कार्यक्रम फिल्मी नगमे। अभी से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 280.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम तरंग। सैनिक भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी का कार्यक्रम आप डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में। फिल्म का नाम है अनारी।

करिश्मा कपूर हिंदी फिल्म उद्योग की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। उनका जन्म 25 जून 1974 के मुंबई में हुआ था। वे प्रसिद्ध कपूर परिवार से संबंध रखती हैं। उनके पिता रणधीर कपूर और माता बबीता हैं। उनकी छोटी बहन करीना कपूर खान भी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री है। तो चलिए उनसे जुड़ा अगला गाना मैं आपको सुनाती हूँ, उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाजों में। फिल्म का नाम है हीरो नंबर 1।

करिश्मा कपूर ने कम उम्र में ही अभिनय की दुनिया में कदम रख लिया था। उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी 1991 थी, जिससे उन्होंने बॉलीवुड में पदार्पण किया। 1990 के दशक में करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे सफलता अभिनेत्रियों में से एक थी। उनकी प्रमुख फिल्में हैं राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, हम साथ साथ हैं, फिजा, जुबेदिया, हाँ, और कई अन्य ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने की हैं। इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया है। करिश्मा कपूर को उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें एक नेशनल फिल्म अवार्ड और 4 फिल्मफेयर अवार्ड भी शामिल हैं। करिश्मा कपूर का विवाह व्यवसायी संजय कपूर से हुआ था, बाद में उनका तलाक हो गया। उनके 2 बच्चे भी हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे जुड़ा अगला गाना।

अभी आपने ये गाना सुना उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाजों में फिल्म जानवर से, और इसी गीत के साथ होता है अंत कार्यक्रम तरंग।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, जामले और जामले फिल्म से, उत्तरा केलकर की आवाज में।

हमें खेद है किन्हीं कारणों की वजह से हम आपको ये गाना नहीं सुनवा पाए। अगला गाना सुनिए, एक वीरा मौली फिल्म से, आनंद सिंधे की आवाज में।

0: दंड पकडूनी मला ओढला, चुडा थरारून गेला।
1: छन छन छन छन छन

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गाना, ऋतु हिरवा फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सहअध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सहअध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास

0: की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +989128109115। दूसरा नंबर है +989128109109। तीसरा नंबर +989128109102। और चौथा नंबर है +989932179359। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
2: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सकारात्मक रही, हालांकि दोनों पक्षों ने बैठक के बारे में अलग अलग राय व्यक्त की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुद्रुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक में उनके परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वर्ष 2024 में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के लिए ट्रस्ट को लगभग 5 एकड़ औद्योगिक भूमि आवंटित की थी। श्री भंडारी ने आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों में कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद ट्रस्ट को लगभग 100 करोड़ रूपये की अनुमानित कीमत की भूमि आवंटित की गयी। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
3: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहाँ से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए अश्मि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस हैं।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
4: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1-2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5-14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदिम शिलेमा जानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मनोज के दूसरे हाफ

0: संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रीत लड़ी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है हम दोनों।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे

अच्छा। अगला गाना सुनिए अजनबी फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है गॉट टू सी ग्रेट हो।

सैनिक भाइयों, आज का प्रसारण यही समाप्त होता है। अभी से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनंदा तिवारी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां सेहत से जुड़ी हर बात हम आप तक पहुंचाते हैं। आपसे जुड़ते हैं प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय और आप रहते हैं हमारे साथ उसी कार्यक्रम में जिसे आप प्यार से कहते हैं रेडियो डॉक्टर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज में बहुत कॉमन होता जा रहा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी अभी तक बहुत कम लोग अच्छे से जान पाए हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, लंबे वर्किंग आवर्स, अनियमित खान पान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, इन सब का असर सबसे पहले हमारी सेहत पर पड़ता है और खासकर हमारे वजन पर। और वजन जब बढ़ जाता है, या यूं कहें कि बढ़ती जो ये मोटापे की समस्या है, ओबेसिटी की समस्या है, ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में हेल्थ समस्या बनता जा रहा है। तो ये जो सिर्फ देखने के लिए जब हम बात करते हैं कि ओबीस है या कोई मोटा है, तो वो लुक्स पर ही सिर्फ इफेक्ट नहीं डालता है, वो कभी कभी गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न कर सकता है। और इन सब के लिए जरूरी होता है वजन कम करना। पर कई बार कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो हर तरह से डाइट प्लान करने के बाद, जिम जाने के बाद, योग करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं पा पाते हैं। तो उनके लिए एक और तरीका है, उसी तरीके पर आज हम बात करेंगे, और वो है बैरियाट्रिक सर्जरी। क्या है बैरियाट्रिक सर्जरी और ये किस तरह का विकल्प है, और क्या इसे हम ये माने कि ये वजन कम करने का आसान तरीका है, या इसके भी कुछ गंभीर या रिस्की आउटकम्स हो सकते हैं, ये सारी बातें आज हमने सोचा हम इस कार्यक्रम में करें। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपको सही ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रही हूं, क्योंकि आज हम इन सवालों पर बिल्कुल सही, साफ, अनबायस तरीके से जानकारी चाहते हैं हमारे अपने दोनों एक्सपर्ट से। तो हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे दोनों रेडियो डॉक्टर्स, डॉक्टर निखिल गुप्ता, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में, एसोसिएट डीन हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। नमस्कार डॉक्टर निखिल, स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
1: धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुकुंद खेतान, आपको चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस बैरियाट्रिक सर्जरी, सर गंगाराम हॉस्पिटल।

0: हॉस्पिटल नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार जी, और आप सभी का स्वागत है। और हम इस ओबेसिटी, जैसे मैम ने बताया, उसके बारे में अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाएंगे।
0: जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों स्पेशलिस्ट को कि आप लोग आए हैं और समय निकाला है आपने, और इस कार्यक्रम में आप आज एक घंटे हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में एजुकेट कीजिए कि ये किस तरह की सर्जरी होती है। और इसके, क्योंकि मैंने टॉपिक इसमें यही रखा है कि बैरियाट्रिक सर्जरीज प्रोस एंड कॉन्स, क्योंकि जहां तक हमें पता है इस सर्जरी या हर सर्जरी के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान या रिस्क भी हो सकते हैं, तो हम आज उन दोनों पर जानकारी चाहेंगे आप दोनों से। और हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम के साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़ गए होंगे, आपको हमारे साथ रहना है इस कार्यक्रम में और अपनी समस्याओं को यहां हमारे रेडियो डॉक्टर्स के सामने रखना है जैसे आप करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो दिमाग में आता है, पहले डॉक्टर मुकुंद आपसे पूछूंगी कि ये जो सर्जरी है बैरियाट्रिक सर्जरी, व्हाट इज दिस?
1: बैरियाट्रिक सर्जरी इज बेसिकली, जब ये सर्जरी शुरू हुई थी आज से 2 दशक पहले, तब ये सर्जरी सिर्फ वेट लॉस सर्जरी के हिसाब से शुरू हुई थी। तब जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा वजन वाले और वजन की वजह से ही परेशान थे, बट पिछले 1 दशक में हमने क्या देखा है कि ये जो बैरियाट्रिक सर्जरी है ये मेटाबॉलिक सर्जरी बन गई है। जैसा आपने अभी बताया कि ये खाली एक वजन के लिए नहीं है, बट ये वजन के साथ साथ बीमारियां जो अपने साथ लाती है उनको ठीक करने का एक मेजर तरीका है, जो मरीज अपने एक्सरसाइज या डाइट या और किसी तरीके से अपना वजन नहीं कर पाते। तो ये बैरियाट्रिक सर्जरी एक तरीके से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ये होती तो 1958-59 में शुरू हुई थी। अच्छा। बट तब ओपन सर्जरीज होती थी, तो ओपन सर्जरीज की अपनी प्रॉब्लम्स होती थी। अब ये जब से लैप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति वाला इरा शुरू हुआ है, इसने इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया है और अब ये इतनी कॉमन हो गई है कि अगर हम देखें तो रोज, अगर मान के चले हम, अगर दिल्ली शहर में भी माने तो रोज करीब 100 मरीज इसके ऑपरेट होते होंगे। अच्छा। तो ये इतना कॉमन सर्जरी हो गई
0: जी। पर अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो इस बारे में हमें जाननी जरूरी हैं, अभी तक लोग उतनी सही तरीके से इसके बारे में जानकारी जुटा नहीं पाए हैं, और इसीलिए रेडियो डॉक्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर मुकुंद ने हमें कहा कि बहुत सारी और कारण होते हैं जो वेट कम होना चाहिए, जिसमें बीमारियां जो हो जाती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर निखिल की, अगर कोई ओबीस है, ओवरवेट है, सबसे पहले तो कैसे पहचानेंगे, कैसे उसकी कैटेगराइज कैसे किया जाता है, जैसे BMI जिसकी बात लोग जानते हैं, और सेकेंडली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो जाती हैं अगर मोटापा हो तो?
2: देखिए, जैसा डॉक्टर मुकुंद सर ने बताया, और अगर हम बात करें आज से 40-50 साल पहले, खासतौर पे अपने देश की बात करें, तो जब भी हम किसी मोटे आदमी से मिलते थे तो एक इम्प्रेशन माइंड में आता था भी खाते पीते घर का है आदमी या औरत। लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि ये एक खाते पीते घर की निशानी नहीं है, ये एक बीमारी है। और सिर्फ मरीज, वो इंसान कैसा लगता है, सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, मोटापा अपने आप में पूरा पैकेज है, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। या मैं ये कहूंगा कि शायद ही शरीर का ऐसा कोई सिस्टम होगा या ऐसा कोई ऑर्गन होगा जिसकी बीमारी मोटापे के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आप ये इसको ऐसे कल्पना कीजिए कि एक 60 किलो के आदमी के ऊपर अगर 120 किलो का वजन उसको उठाना पड़ जाए तो उसके शरीर के सारे हिस्से किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। उसके हार्ट को डबल काम करना पड़ रहा है, उसके फेफड़ों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उसके जोड़ जल्दी घिस रहे हैं, उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, कई तरह के कैंसर, ये सारी बीमारियां हैं जिनसे वो आदमी अफेक्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से। और अगर अपने वो मोटापे पे काबू पा ले, जिसमें सबसे पहले तो हम यही सलाह देते हैं, खाने पीने की सलाह, एक्सरसाइज, अपना डाइट रेगुलेट करके, लेकिन अगर कोई मरीज ये सब करके भी अपने मोटापे से छुटकारा नहीं पा पा रहा है, तो अब आज की डेट में बैरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी अवेलेबल है जिसकी मदद लेकर वो दोबारा से फिट हो सकता है और इन सब बीमारियों से काफी हद तक छुटकारा पा सकता है। मोटापा कहते किसको है? मोटापे के लिए बेसिकली जो शरीर का वजन कितना होना चाहिए, ये या मोटापे में है या नॉर्मल इंसान है, डिपेंड करता है उसका वजन और उसकी हाइट पे। जैसा कि ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि हर आदमी का आइडियल वेट उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, तो BMI जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं वो निकाला जाता है वजन किलोग्राम में, और इसको अगर डिवाइड किया जाए हाइट मीटर में उसका स्क्वायर, तो वेट बाय हाइट मीटर स्क्वायर, तो इससे BMI निकलता है। BMI ऑन एन एवरेज कहते हैं 25 से 28 के बीच में रहे तो वो एक आइडल रहता है। अगर हम मेटाबॉलिक सर्जरी की बात करें कि उसके लिए कब हमको जाना चाहिए, इंडिया अपने देश की बात करें सेटिंग में, तो नॉर्मली अगर पेशेंट का BMI 32.5 साढ़े 32 से ऊपर है।

0: साथ में उसको कोई कोमोबिडिटी या जो मोटापे के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं जिनकी हमने बात करी अभी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कुछ और, तो इस तरह के मरीज में हम मेटाबॉलिक सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं।
1: इस बारे में और डिटेल में जानना चाहूंगी आप दोनों से कि किसकी सर्जरी की जा सकती है, किसको एक्चुअली सोचना चाहिए कि मैं इस तरह की सर्जरी कराऊं। पर यहां पर पहले हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, डॉक्टर निखिल की पसंद का ये गीत मैंने निकाला है और वो सुनकर हम वापस आएंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए, आप हमें मैसेज करिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं बैरियाटिक सर्जरी, इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में। हमारे दो स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात डॉक्टर निखिल ने भी बोली थी कि कुछ इतना बीएमआई से ऊपर होगा, जैसे 32 से ऊपर या कुछ तो किया जाता है। आप थोड़ा सा इसमें बताइए कि क्या यही एक क्राइटेरिया होता है कि बीएमआई, या कुछ और भी देखा जाता है, या कौन ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे करानी चाहिए?

0: देखिए, जब हम छोटे बच्चों में आजकल हम देखते हैं स्कूल में भी ओबेसिटी या वजन ज्यादा हो रहा है, और करीब हम जब स्कूल का सर्वे हमने भी आज से 3-4 साल पहले सारे स्कूल्स का दिल्ली का मिलकर के कुछ एसोसिएशंस के साथ किया था, तो हमने देखा था कि 25-30% जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो ओबेज हैं, है ना। ओबेसिटी मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ओबेसिटी। जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया, क्लास 1 ओबेसिटी है कि हमारा BMI जो है वो 23 से 28 हो, क्लास 2 ओबेसिटी है कि 23 से 28 से लेकर के 32.5 तक हो, और जो क्लास 3 ओबेसिटी में आ गए 32.5 वाले, उनको किसी तरीके की मदद चाहिए,
1: उन्हें चाहिए, चाहे वो
0: उन्हें
1: किसी
0: मदद
1: तरह से
0: चाहिए,
1: भी
0: वो
1: हो।
0: किसी भी तरीके से मदद चाहिए, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाले तरीके हैं, जैसे आपने बताया कि डाइट है, एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब उनको फ्रूटफुल नहीं रिजल्ट्स दे पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि एक BMI एक क्राइटेरिया हो गया, दूसरा क्राइटेरिया होता है हमारा वेस्ट हिप रेशियो, है ना, कि वेस्ट और हिप रेशियो मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग होता है। मेल्स के लिए 0.8 से ऊपर हो, फीमेल्स के लिए 0.9 से ऊपर हो, तो हम कहते हैं कि ये आपका वेट ज्यादा है अगर वेस्ट हिप रेशियो बढ़ जाए तो। जैसे मैंने बताया कि यंग बच्चों में अगर हम देखते हैं तो हम परसेंटाइल देखते हैं, BMI नहीं देखते, उसमें हम परसेंटाइल देखते हैं, परसेंटाइल वेट गेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ हमारे क्राइटेरियाज हैं, बट ये मेन क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपकी ओबेसिटी क्लास क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या तरीका है जो आपको वेट लॉस में मदद करेगा।
1: तो जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया ओबीस है, जिसको आप कह रहे हैं थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है, तो वो क्या आप उसको अपने सामने वो सारे ऑप्शंस देते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्जरी, कि आप लोग सर्जरी पार्ट ही डील करते हैं?
0: नहीं, ओबेसिटी जो है वो एज ए होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए।
1: जी।
0: हम ये नहीं कह सकते, जैसे हमारा मेटाबॉलिक इंस्टीट्यूट है वहां, जहां हम ओबेसिटी एज ए होल को होलिस्टिकली अप्रोच करते हैं, यानी ये नहीं कि हमारे पास बीइंग अ सर्जन मेरे पास पेशेंट आया तो मैं उसको खाली सर्जिकल ऑप्शंस बताऊंगा।
1: यही, यही
0: तो उसको हमारे पास डाइटिशियन भी है, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी है अलग से, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एंड देन द लास्ट इज व्हेन वी कम इनटू पिक्चर, देन सर्जन्स कम इनटू पिक्चर।
1: यस, तो हमारे एक अभी श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात कर लेते हैं, कुछ पूछना है। हेलो।
2: हाँ जी, नमस्ते मैडम जी और डॉक्टर साहब दोनों को भी नमस्ते।
1: जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं और नाम बता दीजिए अपना।
2: मैं योगराज बोल रहा हूँ गुड़गावा से।
1: जी जी बताएं क्या पूछना है।
2: सवाल मेरा ये है जी, 23 साल की बिटिया है और उनका जो है वजन कम हो रहा है। 23 साल की बिटिया का वजन 35 किलो वजन है, उनका वजन कम होता है और खाना खाती है तो पेट में दर्द की शिकायत है। अल्ट्रासाउंड करवाया तो इन्फेक्शन आया हाथों में।
3: अच्छा योगराज जी, जैसा आपने बताया कि आपकी बिटिया का वजन कम हो रहा है और कुछ खाने पे पेट में दर्द भी होता है और जांचों में शायद पेट का इन्फेक्शन आप बता रहे हैं, तो इसमें मैं यही कहूंगा कि वजन कम होने के बहुत सारी वजह होती हैं, जिसमें एक वजह पेट का TB भी हो सकता है या कोई और इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी बिटिया को लेकर जो है नजदीकी डॉक्टर से मिलिए, फिजिशियन हो या सर्जन हो या पेट के डॉक्टर हो, उनसे मिलके जो जरूरी जांचें हैं जिसमें हो सकता है एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, दूरबीन की जांच या CT स्कैन वगैरह हो, जिससे कि बीमारी पकड़ में आए और उसका इलाज शुरू हो सके।
2: जैसे करवाया था,
3: हाँ जी,
2: तो उसमें इन्फेक्शन आया और 4-5 जांच और भी करवाई, जैसे TB की है या 6-7 जांच हमने करवाई, लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं आई।
3: देखिए अब ये तो सारी रिपोर्टें देख के ही कुछ बता पाएंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पेट का TB एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी जांच में पकड़ पाना उसको आसान नहीं होता, और कई बार सिर्फ लक्षणों के आधार पर ही हमको दवाई शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह यह है TB हमारे देश में खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत कॉमन भी है, तो अगर उसके लक्षण उस तरफ जा रहे हैं तो TB की दवाई शुरू करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये फैसला जो डॉक्टर उनको देख रहा है, उनका इलाज कर रहा है, वो ही ले पाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि सारी जांचों की रिपोर्ट लेकर आप अपने डॉक्टर से मिलिए जिनसे भी आप इसका इलाज करा रहे हैं, और वो ही आपकी इसमें मदद कर पाएंगे।
1: चलिए धन्यवाद। एक और हमारे साथी हमारे साथ कॉल पर है। हेलो।
4: हेलो
1: जी जी नमस्कार।
4: राजेंद्र जी मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी जी राजेंद्र जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं।
4: जी 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75-80 kg के आसपास मेरा वेट है, वजन है। तो पहले तो शालिनी मैम को शालिनता से ही नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी।
4: दोनों डॉक्टर साहिबान को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
4: डॉक्टर साहब पहला सवाल मेरा ये है कि किसी शख्स को या पेशेंट को अगर थायराइड है या शुगर है, डायबिटीज है, तो उसका वेट और मतलब मोटापा और वजन घटेगा या बढ़ेगा? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये

0: है कि कई शख्स ऐसे मैंने देखे लाइफ में, कुछ भी खा ले कुछ भी पी ले, ना वो मोटे होते ना उनका वजन बढ़ता, वो बेचारे क्या करें। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे कि उनके हिप्स पे और मतलब कुल्लों पे, टोंट पे और ये चेस्ट पे और गर्दन पे और गालों पे बहुत चर्बी होती है, वो लोग बेचारे क्या करें ये मतलब चर्बी और वजन घटाने के लिए। और चौथा सवाल मेरा ये है कि डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं वजन और मोटापा घटाने के लिए। और पांचवा जो आप ये सर्जरी बता रहे हैं पैरावेटिक सर्जरी, तो इसमें अगर सर्जरी होती है तो इसमें मतलब इसमें टाइम कितना लगता है, खून खराबा ज्यादा तो नहीं होता, तो जरा बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो पूरा कार्यक्रम अपने प्रश्नों में समेटने की कोशिश की है राजेंद्र जी। बहुत सारी चीजें हैं, हम आप पूरा प्रोग्राम सुनेंगे आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, लेकिन आपके जो प्रश्न हैं डॉक्टर साहब उनके जवाब दे रहे हैं। सर बताएं, इन्होंने सबसे पहले ये पूछा था कि थायराइड शुगर जो जिनको होता है उनका वजन पर क्या इफेक्ट होता है इसका।
2: देखिए राजेंद्र जी, जो आपका थायराइड और शुगर है ना, ये दोनों ही तरीके से काम करता है। अगर हमारा थायराइड डिस्टर्ब है या शुगर अनकंट्रोल्ड है तो हमारा वजन बढ़ता भी है। तो थायराइड की बीमारियां दोनों ही तरीके की होती हैं, जिसमें थायराइड लेवल्स बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। तो अगर आपके थायराइड हार्मोन के लेवल्स बढ़ गए हैं तो आपका वजन कम होता है, अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन लेवल्स कम हो गए हैं तो आपका वजन बढ़ने लगता है। सिमिलरली ब्लड शुगर का है कि शुगर ऐसा नहीं कि शुगर की बीमारी से वजन बढ़ता है या वजन कम होता है, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर होगी तो आपका वजन बढ़ भी सकता है। अगर बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर हो जाती है जब, या कुछ शुगर की मेडिसिन भी होती हैं जो हमारे वजन को कम करती हैं, तो ये जब तक हम जांचें नहीं कराएंगे या कारण नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम ऐसे डिक्टेट नहीं कर सकते टर्म्स को कि आपका थायराइड की वजह से वजन ज्यादा या कम है या शुगर की वजह से ज्यादा कम है।
1: और कुछ लोगों का नहीं बढ़ता है ये भी उन्होंने पूछा था, चर्बी बहुत होती है उसका, तो बहुत सारी चीजें तो हम बात करते ही जा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम में, लेकिन सर्जरी पे जो उन्होंने बात की जो हमारे इस कार्यक्रम से संबंध रखती है कि क्या इतना कितना समय लगता है इस सर्जरी में। और मैं इसमें और जोड़ूंगी कि इसमें जब सर्जरी के बाद डॉक्टर निखिल आप बताएं कि इसको नॉर्मल रूटीन में आने में कितना टाइम लगता है पेशेंट को।
3: देखिए अगर हम सर्जरी के टाइम की बात करें तो ये मेटाबॉलिक सर्जरी की 3-4 वैरायटीज हैं और हर सर्जरी का अपना अलग अलग टाइम है, फिर भी अगर मोटी मोटी बात करें तो 45 मिनट से लेकर आप कह सकते हैं करीब 2 घंटे इसमें लग सकते हैं। लेकिन सर्जरी से पहले का भी टाइम होता है, मरीज की पोजिशनिंग वगैरह, और इस तरह के मरीज अपने वजन की वजह से सर्जरी के लिए भी थोड़े से हाई रिस्क केसेस होते हैं, इनका हार्ट इनका लंग हर चीज कॉम्प्रोमाइज लेवल पे है, तो उसको सर्जरी तक ऑप्टिमाइज करने के लिए एनेस्थेटिस्ट को भी यानी कि बेहोशी के डॉक्टर को भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। तो टाइम लेकिन अपने आप में मैं कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानूंगा, ये सारे ऑपरेशन दूरबीन से यानी कि लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिक तरीके से होते हैं और कोई खून या ब्लड लॉस इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता। 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में ऑपरेशन हो जाते हैं, 24 घंटे के बाद ही या कभी तो उससे भी पहले मतलब 12 घंटे के बाद मरीज को सिप्स यानी कि लिक्विड शुरू किए जाते हैं और 1 से 2 दिन के बाद मरीज के अस्पताल से छुट्टी भी हो जाती है। 6-8 घंटे में ही मरीज खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है और एक बार जब 24 घंटे के बाद मरीज लिक्विड्स ले पाता है और चल फिर पाता है तभी उसके अस्पताल से छुट्टी की जाती है। ये सब फायदे हैं लैप्रोस्कोपी के, और सर्जिकल टेक्निक्स में जितनी एडवांसमेंट आई है उस सब के सारे फायदे हैं जो बेरियाट्रिक सर्जरी के मरीज को दिए जाते हैं
1: जी।
3: एक इनका सवाल बड़ा अच्छा था जो मैं चाहूंगा उसका जवाब देना, ये एक्चुअली में ये ऐसा देखा गया है, ये एक फर्क है हमारे देश के मोटे मरीजों में और वेस्टर्न वर्ल्ड के मोटे मरीजों में। हमारे देश में इसको ट्रंकल ओबेसिटी हम कहते हैं कि पेट निकला हुआ है, कंधे और बाजू पतले पतले होंगे लेकिन सारा का सारा वजन जो है वो जिसको पहले जमाने में टोन कहते थे या बेली, लेकिन एशियन पॉपुलेशन में, और सबसे ज्यादा खराब यही है जो ट्रंकल ओबेसिटी है। अगर आप बाहर के मोटे मरीज देखें वो 200-250 किलो के भी होंगे लेकिन वो लंबा आदमी है, कंधे चौड़े हैं उसके और उसके बाजू है उसकी थाइज है। यहाँ पे हम लोगों में हिंदुस्तानियों में या एशियन पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रंकल ओबेसिटी है जो ज्यादा खराब है, ये शुगर ज्यादा कॉज करती है। तो इसीलिए बाहर के मरीजों में मोटापा की सर्जरी की जाती है वजन कम करने के लिए ज्यादा, लेकिन हमारे देश में मोटापे के साथ बीमारियां बहुत जुड़ी हुई हैं इस फैट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से,
1: तो शायद ये हमारे लिए और उतना उपयोगी है,
3: हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। इसीलिए ये जो अभी हम BMI की बात कर रहे थे, BMI की सारी कट ऑफ एशियन पॉपुलेशन में वेस्टर्न वर्ल्ड से ढाई कम है, मतलब बाहर के मरीज में इंडिकेशन 35 से ऊपर है बीएमआई, लेकिन एशियन पेशेंट्स में यही बीएमआई की कट ऑफ 32.5 है, 32.5।
1: तो वो रीजन बिकॉज ऑफ
3: इन्हीं सब की वजह से
1: जी। तो आपने बताया कि जिस तरह से सर्जरी होती है वो तो एक आम सर्जरी की तरह होता है, उसमें

0: वापसी भी लोगों की नॉर्मल लाइफ में वैसे ही है, लेकिन इस सर्जरी में एक्चुअली होता क्या है? और एक टाइप्स की भी बात कर रहे थे आप, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं डॉक्टर मुकुंद, आप भी बताएं कि ये कितनी टाइप्स की सर्जरीज होती हैं इसमें बेरियाट्रिक।
1: ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी है ये बेसिकली मेनली दो तरीके की सर्जरीज होती है, एक रेस्ट्रिक्टिव जिसमें हम खाने की आपकी जो कैपेसिटी है उसको कम कर रहे हैं खाली।
0: अच्छा।
1: दूसरी होती है कि जिसमें रेस्ट्रिक्शन और माल एब्जॉर्प्शन, माल एब्जॉर्प्शन मतलब हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पहले उसको डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन्स में जाता है और इंटेस्टाइन्स उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी और सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो कहलाती है माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड माल एब्जॉर्प्शन है कि जिसमें हमारे खाने की कैपेसिटी तो कम हुई बट हमारा कुछ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन बायपास हो गया। जैसे हम शहरों में बायपास रोड देखते हैं, वो बड़ी रोड है बट हमने ट्रैफिक को बायपास कर दिया, इसमें हम जो इंटेस्टाइन्स को बायपास करते हैं तो जो खाने का मिक्सिंग है विद द बॉडी जूसेस, मेनली जब खाना हम खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट ग्लैंड से जो हमारे जूसेस बन रहे हैं वो जूसेस उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। उन जूसों से जब तक वो मिक्स नहीं होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली। तो जब हमने बायपास कर दिया तो उसका वो जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस में डबल तरीके से इफेक्ट करती है, ये रेस्ट्रिक्टिव और माल अब्सॉर्प्टिव सर्जरीज।
0: लेकिन आपने बोला कि हम उसको बाईपास कर देते हैं, तो क्या बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो जाएगी अगर किसी की ये सर्जरी हुई है तो?
1: ये जो जिन मरीजों में हम ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी वाला प्रोसीजर करते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरीज कहते हैं, उनमें अमूनन हम देखते हैं जो वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादातर पब्लिक वेजिटेरियन होती है, तो वेजिटेरियंस में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि उनकी डाइट में वैसे ही न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और दूसरा प्रोटीन्स कम होते हैं। तो हम जैसे पहले पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में भी, जब हम सोशल अपना पढ़ते थे, कि प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन होता है, तो हम सिर्फ कैलोरी माल न्यूट्रिशन चाहते हैं, ना हम प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन चाहते हैं, ना हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का माल न्यूट्रिशन चाहते हैं। तो कई बार इन मरीजों में हमें शुरू के कुछ टाइम, जब तक मरीज रिकवर कर रहा होता है, अपना वेट लॉस जर्नी में चल रहा होता है, उस जर्नी के दौरान हम उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेने के लिए एडवाइस करते हैं।
0: ओके, तो सप्लीमेंट्स देने पड़ सकते हैं, और बाद में जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद भी क्या डॉक्टर निखिल बताएं कि किस तरह का खान पान उन्हें रखना होता है या प्रिकॉशंस लेनी होती है, क्या तब भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं या टेस्ट कराना पड़ता है?
2: देखिए, बिल्कुल सही जैसे अभी बात बताई कि बाईपास सर्जरी के बाद खासतौर पे कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स की या सप्लीमेंट्स की मरीज को जरूरत पड़ सकती है और उसको रेगुलर फॉलोअप में रखा जाता है, टाइम टू टाइम उसके हाँ टेस्ट जरूर कराए जाते हैं। और एक बार जब एडिक्वेट वेट लॉस हो जाता है या जो हमारा टारगेट वेट है वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद ये सप्लीमेंट्स बंद किए जा सकते हैं। अगर पेशेंट ने अपना वेट लॉस अचीव कर लिया है, एक आइडल वेट कर लिया है, उसका लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन ये सब हो गई है, तो इन सप्लीमेंट्स को बंद किया जा सकता है पहली बार। लेकिन तब भी मैं जरूर कहूंगा कुछ कुछ मरीजों को इनकी रिक्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर दिन में एक गोली लेनी भी पड़े तो। लेकिन इसके जो फायदे हैं, जो उसके उससे अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि वही मरीज जो ऑपरेशन के पहले दिन में ब्लड प्रेशर की और शुगर की 5-6-7 गोलियां खा रहा था, वो सब बंद हो जाती हैं, डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, हार्ट अटैक का खतरा कम हो गया, एस्थमा में
0: ये दवाइयां इमीडिएट बंद हो जाती हैं उसके बाद,
2: बहुत जल्दी।
0: अच्छा,
2: बहुत जल्दी, बिल्कुल। तो इनफैक्ट हम ऑपरेशन के एकदम बाद तो पहले बंद ही करते हैं सारी दवाइयां और फिर टाइम टू टाइम उसके टेस्ट करा के देखते हैं कि अब उसको इसकी जरूरत है कि नहीं है। काफी मरीजों में दवाई बंद हो जाती है, मोस्टली पेशेंट्स में अगर बंद नहीं भी होती है तो रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है, दैट इज फॉर श्योर।
0: जी, यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गीत सुनेंगे और ये गीत डॉक्टर मुकुंद की पसंद का है तो हम सब आनंद लेते हैं इस गीत का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर और अभी बहुत सारी बातें पूछना बाकी है। आप भी कनेक्ट हुई है हमारे साथ 49 पर और व्हाट्सएप के जरिए।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज बात हो रही है बैरियट्रिक सर्जरी पर, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए हैं। हमें देवदत्त पारसोलिया जी ने लिखकर भेजा है, नमस्कार टू रिस्पेक्टेड आरजे रेडियो डॉक्टर एंड ऑल टीम ऑफ एफएम रेनबो, नाइस टॉपिक, गुड वॉइस एंड सुपर प्रोग्राम, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। और ये एक मैसेज आया है, लिखा है परिधि ने दिल्ली से, ग्रेट टॉपिक, थैंक यू। इनका एक क्वेश्चन है कि हाउ इज लिपोसक्शन डिफरेंट देन बैरियट्रिक सर्जरी एंड डू बैरियट्रिक सर्जरी लीव लाइफ लॉन्ग सर्जरी मार्क्स और इज इट मिनिमल इन्वेसिव। ये दो चीजें पूछी हैं।
2: जी, मैं आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये बहुत सारे जो पब्लिक है उनके दिमाग में रहता है कि ये किस तरीके की सर्जरी है बैरियट्रिक सर्जरी और ये लाइपोसक्शन से कैसे डिफरेंट है। तो लाइपोसक्शन एक तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसमें हम वजन की वजह से जहां जहां शरीर में हमारी चर्बी, तो चर्बी जैसे डॉक्टर निखिल ने पहले भी बताया कि चर्बी दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तो हमारे शरीर में बाहर चमड़ी के नीचे है जिसको हम पेरिफेरल फैट कहते हैं, है ना, एक हमारा विसरल फैट है जैसे हमारा ट्रंक में जो इकट्ठा है वो खाली पेट में बाहर भी इकट्ठा है और पेट के अंदर जो विसरा हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें और उसके आसपास भी इकट्ठा है। तो ये जो लाइपोसक्शन है ये हम जो पेरिफेरल फैट है स्पेशली जैसे थाइज में हो गया, आर्म्स में हो गया, एब्डोमन में हो गया, बैक में हो गया, वेस्ट में हो गया, कहीं हिप्स में हो गया, वहां से हम सिर्फ चर्बी की जो सेल्स होती हैं उनको सक्शन करके निकाल लेते हैं, उसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। तो ये प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी है जो बॉडी शेपिंग सर्जरी है, और जो हम बैरियट्रिक सर्जरी है जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अब मेटाबॉलिक सर्जरी है, ये सिर्फ वेट लॉस सर्जरी नहीं है, वेट से एसोसिएटेड बीमारियों को भी ठीक करने में हमारी मदद करती है।

0: ओवरऑल वेट लॉस में हेल्प करती है, नॉट ओनली पेरिफेरल बट विसरल फैट भी कम करती है, जिसकी वजह से हमारी बीमारियों की जो जड़ है,
1: हम इसको ऐसा समझें कि वो सिर्फ लुक्स पे इफेक्ट डालेगी और ये आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और इन्होंने ये जो पूछा है कि क्या बैरियाट्रिक सर्जरी में क्या सर्जरी मार्क्स रह जाते हैं लॉन्ग टर्म, या इसको रोबोटिक, या आप जैसे बता रहे थे कि आजकल मिनिमम इन्वेसिव तरीके से किया जाता है तो वो मार्क्स नहीं रहते हैं।
2: जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात करी थी कि बैरियाट्रिक सर्जरी 99.9% या 100% लैप्रोस्कोपिकली ही होती है या रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक, और ये दोनों ही मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे कट दिए जाते हैं, 10 mm, 5 mm, आप मानिए 1 cm के और आधे सेंटीमीटर के कट होते हैं जो ना के बराबर दिखाई देते हैं, यही इसकी एडवांटेज है। और इन छोटे छोटे कट से हम पोर्ट्स डालते हैं, उससे ही हमारे जो इंस्ट्रूमेंट से पतले पतले वो अंदर जाते हैं और उसके थ्रू सारा ऑपरेशन किया जाता है। इस सब का फायदा यह है कि मरीज की पोस्ट ऑप में रिकवरी बहुत फास्ट है, दर्द का एहसास बहुत कम होता है मरीज को, वो बहुत जल्दी खड़ा होकर चलना फिरना अपने सारे कामकाज कर सकता है, और लुक्स वाइज भी क्योंकि ये स्कार ना के बराबर दिखाई देते हैं, तो ये सब इस कप की एडवांटेज है बजाय की ओपन सर्जरी की।
0: तो मैं इसमें एक कमेंट ऐड करूंगा, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि हम ये सुनते थे जब हम मेडिकल स्कूल में थे कि बिग सर्जन्स मेक बिग इंसिजन्स, तो हमारे बड़े बड़े जो सर्जन्स थे कि ये बड़ी अच्छी सर्जरी करते हैं, बड़े चीरे लगाते हैं, वो सर्जन्स का पर्सपेक्टिव था। अब अगर हम पेशेंट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो ये जो पेशेंट्स पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है इसी की वजह से लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का इजाद हुआ है, कि हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि सर्जन की कंफर्ट नहीं है, पेशेंट की कंफर्ट है। जैसे डॉक्टर निखिल ने कहा कि अब वो मरीज जो है वो 4-6 घंटे बाद अपने पैरों पे खड़े होकर चल सकता है, जिस मरीज की सर्जरी 4 घंटे पहले, सर्जरी तो बड़ी है बट मरीज के लिए वो छोटी है क्योंकि उसकी दूरबीन पद्धति द्वारा सर्जरी हुई है।
1: जी जी, इसके फायदे हैं। और देखिए एक मैसेज और आया है हमारे पास, इन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून प्रकाश फ्रॉम दिल्ली, इन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा जो है उसका वेट 150 kg है और 30 years उसकी एज है, वो सब कुछ करता है, डाइट भी एक्सरसाइज भी, पर उसका वेट कम नहीं हो रहा है, तो प्लीज मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और कुछ और सर्जरी करा के, अगर हम ये सर्जरी कराते हैं तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या तो साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं सर?
2: देखिए जैसे इन्होंने बताया अपने बेटे के वजन के बारे में, लेकिन क्योंकि इन्होंने हाइट नहीं बताई है तो हम बीएमआई तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि 150 kg तो बहुत ज्यादा है और हर लिहाज से इसका बच्चे का जो बीएमआई है वो 45 से ऊपर ही आएगा मेरे हिसाब से। और जैसा बताया कि वो खाने पीने का परहेज और एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ ट्राई कर चुका है लेकिन तब भी इच्छा मुताबिक वो वेट लॉस नहीं अचीव कर पा रहा है, तो जितना इस हिस्ट्री से जो पता लग रहा है कि यस वेट लॉस सर्जरी या बैरियाट्रिक सर्जरी मेटाबॉलिक सर्जरी जरूर इसकी मदद करेगी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने साइड इफेक्ट्स की बात करी, तो देखिए साइड इफेक्ट में कहूंगा किसी भी दवाई के या किसी भी ऑपरेशन, कोई भी ऐसा ऑपरेशन या दवाई नहीं है जिसके साथ साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है किसी भी ऑपरेशन से पहले, इवन मेटाबॉलिक सर्जरी से पहले भी हम सब तरह की सावधानियां बरतते हैं, इस तरह के मरीजों का बहुत ज्यादा चेकअप किया जाता है ऑपरेशन के पहले, क्योंकि जैसे हमने बात करी थी इनके पूरे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हैं, तो इनके हार्ट का, लंग का, शुगर स्टेटस, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें ऑपरेशन के पहले चेक की जाती हैं, सारी सावधानियां बरती जाती हैं जिससे कि ऑपरेशन के समय और ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन कम से कम रहे। इसीलिए इन मरीजों को बहुत जल्दी हम जैसे बात की थी खड़ा कर देते हैं 4-6 घंटे में ही, जिससे कि ऑपरेशन के बाद जो कुछ मरीजों को निमोनिया हो जाता है लंबे समय तक लेटे रहने से या खून के क्लॉट जम जाते हैं, उन सबको रोकने के लिए ही इन सब मरीजों को जल्दी खड़ा किया जाता है, जल्दी खाना पीना शुरू किया जाता है। आज की डेट में मैं कहूंगा ये सर्जरी इतनी सेफ हो गई है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी और ऑपरेशन से, चाहे वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो या हर्निया का ऑपरेशन हो और चाहे वो मेटाबॉलिक सर्जरी हो, इनकी कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट बराबर हो गई है।
1: यहाँ पर हम अपने श्रोता को फोन लाइन पर जो वेट कर रहे हैं उनसे बात कर देते हैं। हेलो
3: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, बताइए।
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
2: नमस्कार
3: जी, मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरी एज 44 years है, 44 साल सर। और मेरा मतलब वजन पीछे था अभी कुछ दिन पहले 102 kg था सर, और हाइट है मेरी 5'10" या 11 inch, तो सर मेरा पेट बहुत निकलो है और मेरे भाई का भी पेट बहुत निकलो है, जबकि खाने को तो 3 टाइम की रोटी भी मिलती है सही हिसाब से हमें, तो अब इस बड़े हुए पेट को कैसे कम किया जाए सर, प्लीज ये बताइए।
1: वेट को कैसे कम करें, इन्होंने बताया 102 kg इनका।
0: देखिए जैसे आपने बताया तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, जैसे आपने कहा कि आपकी हाइट 5'10" या 11 है, इसका मतलब है आप 175 cm आपकी हाइट नाप लें तो एक सिंपल कैलकुलेशन होता है कि हम आइडियल वेट कितना माने, तो उसमें से अगर हम 100 घटा दें, जो हमारी हाइट है उसमें से अगर हम 100 घटा देते हैं तो हमारी जो हाइट है उसके लिए जो हमारा वेट है उसकी अपर लिमिट आ जाती है। तो अगर 175 आपकी माने तो आपका 75 किलो वजन होना चाहिए, यानी आप 25 से 30 किलो अपने वजन से ऊपर हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम BMI कैलकुलेट करेंगे तो आपका BMI जो है वो Grade 2 लेवल ओबेसिटी में आएगा। तो Grade 3 ओबेसिटी जहां आपको किसी तरीके की सर्जिकल हेल्प चाहिए, आप उस कैटेगरी में अभी नहीं फॉल करते हैं ऐसा लगता है। जब तक हम पूरे टेस्ट नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम पड़ेगा एग्जैक्ट, बट अगर आप Class 2 ओबेसिटी में है तो ये आपके लिए अभी आंख खुलनी चाहिए, है ना, कि जब आंख खुली तब सवेरा है। अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो आप धीरे धीरे करके वो कब Class 3 ओबेसिटी में आ जाएंगे आपको नहीं मालूम। तो आपको एक एडवाइस लेना चाहिए, या तो फिजिशियन से लेना चाहिए, अगर आपके साथ कुछ इसमें बीमारियां हैं जैसे डॉक्टर निखिल ने बोला ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, नींद की बीमारी, थायराइड की बीमारी, जोड़ों की बीमारी या गुर्दे की बीमारियां, तो इन सब बीमारियों के साथ अगर आप वजन ज्यादा लेके चल रहे हैं तो आपको एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अगर फिजिशियन आपको एडवाइस करता है कि नहीं, आपको एक सर्जिकल एडवाइस भी लेना चाहिए, तो आपको एक जो बेरियाट्रिक सर्जन्स होते हैं, मेटाबॉलिक सर्जन्स होते हैं, उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए। वो आपकी मदद कर पाएंगे कि किस तरीके से क्या तरीका आपके लिए बेहतर है आपको वजन कम करने का।
1: जी, जोया हमें लिख रही हैं, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, और ये लिख रही हैं कि क्या मैदा, जैसे हमें पता है, इन्होंने लिखा है मैदा इज वेरी नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड स्टमक, बट वी ईट आउटसाइड फूड एंड इन मोस्ट ऑफ द फूड मैदा एंड सारडो इज यूज्ड, हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर हेल्थ एंड कैन वी गो फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी।
2: देखिए, एक तो जोया जी ने अपना वेट और हाइट मेंशन नहीं करी है तो अभी हम ये नहीं बता पाएंगे,
1: इन्फॉर्मेशन ही चाहिए उनको।
2: अच्छा, जो बात करी इन्होंने मैदा की इस तरह की, तो ये मैं जरूर कहूंगा कि खाना जितना प्रोसेस्ड हम जितना करते हैं, यानी कि वी आर मेकिंग इट मोर एंड मोर सिंथेटिक, उसमें नेचुरल कम हो रहा है और सिंथेटिक वो ज्यादा होता जा रहा है, तो उतना ही खराब होता जा रहा है, उससे न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता जा रहा है और जो हार्मफुल एलिमेंट्स उसमें ऐड हो रहे हैं, इसीलिए मैदा को जो है सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता। तो जब जोया जी को ये सारी बातें पता भी हैं तो जरूर इनको अपने खाने पीने में मैदा की मात्रा कम रखनी चाहिए, और आटा का मात्रा है जो हम जिसको हम नेचुरल खाना अपना कहते हैं वो लें, और एक्सरसाइज, योगा किसी भी फॉर्म में जो है वो इनको अपना वेट मेंटेन करने में मदद करेगा।
1: जी, क्योंकि हम कार्यक्रम ओबेसिटी पे कर रहे हैं तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाह रहे हैं कि खान पान में क्या सही है क्या गलत, और ये हमें लिखकर भेजा है हमारे रेगुलर लिसनर है नरदेव सिंह चौहान जी, कोटद्वार उत्तराखंड में रहते हैं। इन्होंने लिखा, शालिनी मैम, डॉक्टर निखिल और डॉक्टर खेतान को गुड आफ्टरनून। मैम, मोटापे की बात कर रहे हैं, पहले का खान पान और आज के खान पान, उसका जो फर्क हुआ है उसके कारण भी मोटापा बढ़ रहा है क्या? तो हम इस पे भी बात कर लें थोड़ी सी, वैसे और भी बहुत सारे प्रश्न है हमारे पास कि मोटापा बढ़ क्यों रहा है, क्या खान पान मेजर रोल प्ले कर रहा है
0: इसमें? खान पान और हमारा लाइफ स्टाइल दोनों चीज ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। खान पान जो पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि खान पान पहले हमारा नेचुरल खाना ज्यादा था, है ना, अभी हमारा जैसे डॉक्टर किल ने कहा कि प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है और अवेलेबिलिटी है। पहले हमारे खान पान के लिए हमें जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फूड के प्लेटफॉर्म पे घर बैठे खाना मंगा लेता हूं, तो मेरे लिए इजी एक्सेस ऑफ फूड हो गई, एबंडेंस ऑफ फूड भी हो गया, इजी एक्सेस ऑफ फूड भी हो गया और प्रोसेस्ड फूड भी हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी फूड की तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही हैं वजन में। जैसे पहले के जमाने में हम ये मैदा, सूजी, ये सब चीजें कम होती थी, आटा, चावल, ये खाना, सब्जी, तीन तरीके की सब्जियां, रोटी, चावल, हमारी प्लेट रेनबो जैसी कलरफुल दिखती थी। अब हमारी प्लेट जो है वो सिंगल कलर की होती है, तो अगर रेनबो जैसी प्लेट दिखेगी हमारी तो वो न्यूट्रिशियस खाना है। अगर हमारे खाने में एक या दो कलर की चीजें दिख रही हैं वो हमारा न्यूट्रिशियस नहीं है। जैसे वाइट्स जो होते हैं ना, हमें वाइट्स जो भी खाने में चीजें, सूजी, मैटा, आधा चावल, या हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो बहुत सारे ठीक है, हेल्थ के लिए एवरेज चीजें हैं, बट वो न्यूट्रिशंस नहीं है इतने। तो न्यूट्रिशंस चीजें हैं, जितनी कलरफुल होंगी उतनी न्यूट्रिशन, सबकी अपनी डिफरेंट न्यूट्रिशंस वैल्यू है। अगर हम वो कलर्ड फूड खा रहे हैं तो, अगर हम वाइट फूड खा रहे हैं तो उनकी सबकी मोर और लेस कॉमन न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, पहले इनसे बात करते हैं, फिर और कुछ बातें हैं आपसे इससे संबंधित पूछने की। हेलो।
4: हेलो
1: जी। जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, नाम बताएं।
4: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार,
4: मेरा नाम अमन कुमार है, घर में गाँव कुकू चाची इंदिरा नाम से हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
1: जी बताएं, क्या पूछना है आपको?
4: मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोटापे कम करने के लिए कौन सा योगा या प्राणायाम सबसे लाभदायक है?
1: देखिए आज हम योगा या प्राणायाम पे तो बात नहीं कर रहे हैं, ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ ये भी वेट लॉस कर सकते हैं अगर आप इसको नियमित दिनचर्या में शामिल करते हैं, एक्सरसाइज को या योग को, पर यहाँ पर हम बात आज बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में कर रहे हैं और ये सर्जरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है इस पर कर रहे हैं। धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब यहाँ पर जैसे अब वेट लॉस की जब हम बात कर रहे हैं, हम खान पान की बात कर रहे हैं, तो क्या जब ये सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी खान पान पे ध्यान रखना पड़ता है? जैसे कुछ लोग इस तरह की थिंकिंग से आते हैं कि वेट लॉस हो गया, अब तो सर्जरी हो गई, अब हम कुछ भी खा सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: देखिए जरूर, जैसा हम पिछले आधे एक घंटे से बात करते हुए आ रहे हैं कि वजन कम करने के लिए जो मुख्य हमारा फोकस होना चाहिए वो तो खाने पीने की आदतों पर और एक्सरसाइज पे ही होना चाहिए। बैरियाट्रिक सर्जरी हम उसी मरीज को ऑफर कर रहे हैं जो ये सब ट्राई करके भी एडिक्वेट वेट लॉस अचीव नहीं कर पा रहा और साथ में वो मोटापे की वजह से और बहुत बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। इस सर्जरी से हम उसका वजन एक बार आइडियल कैटेगरी में ले आते हैं जितना उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन अब उसको मेंटेन करने के लिए वही दो चीजें जिसकी हमने शुरू में बात करी थी, यानी कि खाने पीने की आदत और एक्सरसाइज, यानी कि वो तो करनी ही करनी है। अगर कोई भी मरीज सोचे कि सर्जरी शॉर्टकट है कि मैं खाने पीने में परहेज नहीं कर सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं सर्जरी करा लेता हूं और बाकी मैं ऐसे ही करता रहूंगा, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नहीं, मरीज का मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है क्योंकि अपना वेट लॉस को मेंटेन रखने के लिए, दोबारा कह रहा हूं मैं, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज,
1: यानी ये सर्जरी एक बार हो गई,
2: अगर आपने उनका रिप्लेसमेंट नहीं है,
1: फॉलो नहीं किया, तो आप वापस वेट गेन कर सकते हैं।
2: इनफैक्ट वेट रीगेन जो होता है ऑपरेशन के बाद 2 साल 3 साल 4 साल के बाद, वो मुख्य इन्हीं वजहों से होता है कि मरीज मोटिवेटेड नहीं होता, खाने पीने की आदत में बदलाव नहीं कर पाता, एक्सरसाइज व्यायाम का शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाता, और यही मरीज जो है वो वेट रीगेन लेकर आते हैं।
1: तो डॉक्टर मुकुंद, मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि फॉलो अप का क्या महत्व है, कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा दोबारा से वेट गेन हो सकता है, तो कितना फ्रीक्वेंटली उन्हें डॉक्टर से इन टच रहना पड़ता है?
0: देखिए जैसे हम डाइट की बात कर रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, तो कुछ डेफिनेटली डाइट प्लान होता है हमारा, और उस डाइट प्लान और आपकी आगे की जर्नी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप और मैं मिलकर, आपकी या मेरी एक्सपेक्टेशन अलग नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेशन हमारी खरी उतरे उसके लिए हमें रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। जैसे किसी भी ऑपरेशन के बाद हम 7 से 10 दिन के अंदर मरीज को पहले फॉलोअप के लिए बुलाते हैं देखने के लिए कि उनकी हेल्थ सेहत सही है कि नहीं, उस वक्त हमारा टारगेट वेट लॉस नहीं होता कि कितना वेट हुआ, फिर हम पहले महीने पर बुलाते हैं, फिर पहले एक साल हम उसको 3-3 महीने के अंतराल पर बुलाते हैं, कुछ जांचें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपको कुछ बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं तो उन बीमारियों से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ रेगुलर टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि आप में कोई न्यूट्रिशनल की कमी तो नहीं हो रही या प्रोटीन्स की कमी तो नहीं हो रही, उनके लिए कुछ टेस्ट कराते हैं और एक फिजिकल चेकअप होता है, और साथ में आपका कॉम्प्लायंस, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेशेंट कॉम्प्लायंस जरूरी है, अगर आप अपनी डाइट एक्सरसाइज या सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अदर साइड ऑफ कोर्ट में चले गए, आपको वेट लॉस तो मिलेगा बट डिजायरेबल नहीं मिलेगा, जितना आप चाहते हैं उतना भी नहीं मिलेगा और वो सस्टेन भी नहीं रहेगा, यानी लॉन्ग टर्म जो हमारा वेट लॉस मेंटेनेंस था वो भी हमारा हो सकता है पूरा ना रहे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि पहले 5 साल हमें एनिवर्सरी जैसे मनानी चाहिए पेशेंट को फर्स्ट ईयर के बाद, कि एटलीस्ट साल में एक बार जो अपने डॉक्टर हैं उनको हम कंसल्ट करें, उनसे एडवाइस लें और समझें कि हमारी जो जर्नी है वो ठीक चल रही है कि नहीं, हम वेट रीगेन की साइड तो नहीं है। कई बार कुछ मरीज हैं जिनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, वो अदर साइड ऑफ कोर्ट में चले जाते हैं कि हम चाह रहे थे 40 किलो वजन कम हो, वजन तो 40 किलो कम हो गया बट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो गई जिनकी वजह से वो कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो उन सबको भी मेडिकल एडवाइस या मेडिकल केयर की जरूरत होती है, तो उनको भी फॉलोअप जरूरी होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बहुत बेसिक प्रश्न है अभी तक हमने बात नहीं की है, कि आपके पास लोग आते होंगे और बोलते होंगे रैंडमली कि मुझे इतना कम करना है या उतना कम करना है, एक्चुअली कितना कम किया जाता है, इसका भी कोई कैलकुलेशन होता है क्या?
2: ये देखा जाता है, इसके लिए जो टर्म है वो है एक्सेसिव वेट, या कितना वेट उसका ज्यादा है उसके आइडियल वेट से, और फिर हम टारगेट करते हैं कि उसका कितना वेट लॉस हम चाह रहे हैं, उसका हम कहते हैं अगर 75% ऑफ द एक्सेसिव वेट अगर वो पेशेंट लूज कर ले तो कहते हैं कि उसने एडिक्वेट वेट लॉस अचीव कर लिया है। अब उसके लिए डिपेंड करता है कि फिर कितना वो हमारा टारगेट कितना आ रहा है, पेशेंट को 20 किलो लूज करना है या 40 किलो करना है या 50 किलो करना है, वो डिसाइड करता है हम कौन से सर्जरी के लिए जा रहे हैं। जैसा बाईपास सर्जरी की हम बात कर रहे थे, अगर मरीज को जितना ज्यादा वेट लूज करना है तो उसका बाईपास उतना ही हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, इसीलिए जैसे हम टीम की बात कर रहे थे कि होलिस्टिक अप्रोच, पेशेंट के साथ बैठकर बात की जाती है क्या

0: आपका वेट इतना होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, और है ये इतना, इतना वेट हम लूज करना चाह रहे हैं, और उसके लिए ये हमारे पास ऑप्शंस हैं।
1: जी, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और रेडियो डॉक्टर में आज हमने काफी सारी बात की है बैरियाट्रिक सर्जरी प्रोस एंड कॉन्स पर. अभी भी बहुत सारी बातें मन में हैं, क्वेश्चंस हैं. डॉक्टर साहब ये बताइए डॉक्टर मुकुंद कि अगर सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी आपने कहा है कि खतरा रहता है कि वेट रीगेन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या कर सकता है?
1: देखिए जैसे हमने कहा तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज है कि वेट रीगेन का कारण क्या है. तो ये एक दो पहिए की साइकिल है. हमारा जो सर्जरी हमने कर दी वो एक पहिया है कि वो ऑपरेशन हो गया और आपको एक डिजायरेबल वेट यानी जो हमें वेट चाहिए था एक्सेस वेट का जो एक परसेंटेज वेट लॉस है वो हमें मिल गया. अब हमें दूसरा पहिया अपना चलाना है. तो साइकिल का जब दूसरा पहिया चलेगा मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. तो ये एक इजी वे आउट नहीं है कि हम कहें कि मैंने सर्जरी करा ली और मेरा वेट लॉस हो गया, अब मैं वेट मेंटेन होता रहेगा और मैं कुछ भी खाता पीता रहूं. तो आपके अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा एक दैनिक दिनचर्या को चाहे

0: खान पीन का हो चाहे हमारी एक्सरसाइज का हो, बनाना पड़ेगा। अगर हमें एक्सेसिव वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है, तो उसके लिए ही जो फॉलोअप, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम रेगुलर फॉलोअप में होते हैं तो हम उसके कारण को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए आप किसी कारणवश आप रेगुलर फॉलोअप में नहीं रहे और आप 5 साल बाद अब आप देखते हो कि आपका 50 किलो वजन कम हुआ था और अब 25-30 किलो वजन बढ़ गया है, तो डेफिनेटली यू अगेन हैव टू गो टू दी कंसर्न सर्जन जिससे आपने ऑपरेट कराया है। और वो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेट रीगेन के बाद भी सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन होती है, आज की तारीख में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा मेडिसिंस भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं। तो जैसे हमने पहले भी शुरुआत में डिस्कस करा था कि होलिस्टिक अप्रोच लेकर के भी हम ये वेट लॉस को दोबारा अटेन कर सकते हैं।
1: जी जी, लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ा आपने बताया, रीजन खान पान बताया, लेकिन बच्चे आजकल बहुत ओवरवेट हो रहे हैं, तो डॉक्टर निखिल ये बताइए कि क्या सिर्फ खान पान लाइफस्टाइल ही इसके लिए दोषी हम माने या कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं?
2: नहीं, बिल्कुल, खाने पीने के अलावा आजकल स्टडीज में ये देखा गया है कि काफी सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। और इसीलिए हम देखें कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में, मतलब इवन 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल के बच्चों में भी बहुत ज्यादा ये बीमारी पाई जा रही है। इसमें एक वजह ये जरूर है, जैसी बात की थी हमने खाने पीने के बारे में, प्रोसेस्ड फूड, मैदा, जंक फूड, ये सब इसका भी मात्रा इस्तेमाल बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, लेकिन जेनेटिक्स भी अपना रोल प्ले कर रही है। इसलिए हमने देखा है कि पूरा का पूरा खानदान, पूरी फैमिली में ही पिता भी, दादा भी और बेटा बेटी भी, सबके सब इससे ग्रसित हैं।
1: जी बिल्कुल। तो अब इतना ही समय है कि मैं अपने धन्यवाद दूं अपने आज के गेस्ट को और आपको बता दूं कि आज हमने ढेर सारी बातें की बैरियट्रिक सर्जरी के बारे में। हमारे साथ रहे डॉक्टर निखिल गुप्ता, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, एसोसिएट डीन, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर मुकुंद खेतान, को चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एक्सेस बैरियट्रिक सर्जरी, सर गंगाराम हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों यहां आए समय निकालकर इस पर ढेर सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमेरिका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते की जानकारी देंगे। श्री रूबियो का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्दरून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको में ग्रुप के में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
2: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, अभी पिछले रविवार को फादर्स डे मनाया गया और सबने इस बात को माना है कि पिता वो है जो हर वक्त अपने बच्चों के लिए सोचता रहता है। पिता वो है जो खुद पुराने जूते पहनकर आपके लिए नए जूते लाता है। पिता वो है जो अपनी चाय आधी छोड़कर आपका दूध पूरा कर देता है। पिता वो है जो कभी बच्चों से आई लव यू नहीं कहते, मगर अपने बच्चों से हर रात जरूर ये पूछते हैं कि बेटा या बेटी खाना खाया या नहीं। पिता वो है जो हर बात पर माँ की तरह गले नहीं लगाते, मगर हर गलती पर एक ढाल बनकर जरूर खड़े रहते हैं। पिता वो जड़ है जो दिखते नहीं है, मगर परिवार रूपी पेड़ को कभी गिरने नहीं देते। दोस्तों, इसीलिए बाहर से कड़क और दिल से नरम पिता को हर किसी ने याद किया इस रविवार, और दिल से पिता के लिए निकला थैंक यू।

0: जी हाँ, एक पिता जितना अपने बच्चों के लिए करता है उस कर्ज को बच्चा कभी चुका नहीं सकता, लेकिन हाँ, आई लव यू बोलकर उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला सकता है। दोस्तों, बच्चों की जिंदगी में एक पिता की क्या अहमियत होती है, आइए सुनते हैं कुछ लोगों से।
1: मेरा नाम आकांक्षा है और मैं दिल्ली से हूँ। कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान को एक ऐसा दोस्त जरूर मिलता है जो हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहे। मुझे लगता है कि मुझे वो दोस्त बहुत पहले ही मिल गए थे और वो हैं मेरे पापा। मैं एक ओनली चाइल्ड हूँ, इसलिए शायद मेरा और पापा का रिश्ता थोड़ा अलग हो सकता है। हम सिर्फ फादर और डॉटर नहीं हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बचपन में जब साइकिल चलाना सीख रही थी तो उन्होंने पीछे से साइकिल पकड़ी, और आज जब जिंदगी चलना सीख रही हूँ तब भी वो वैसे ही मेरे साथ खड़े हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि पापा लोग एक अजीब ही सुपर पावर लेकर आते हैं। हम कुछ बोलते नहीं, फिर भी उन्हें पता चल जाता है कि हम खुश हैं या परेशान। और जब पूरी दुनिया हमसे सवाल पूछ रही होती है तब वो एक इंसान होते हैं जो कहते हैं, तू बस कोशिश कर, मैं हूं ना। मैंने अक्सर देखा है कि माँ का प्यार बहुत खुलकर नजर आता है, लेकिन पापा का प्यार उन छोटी छोटी बातों में छुपा होता है। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना, अपनी जरूरतों से पहले हमारी जरूरतें पूरी करना और फिर भी कभी शिकायत ना करना। और सच कहूं तो जिंदगी में बहुत लोग हैं जो आपकी सक्सेस पर तालियां बजाते हैं, लेकिन पापा वो इंसान होते हैं जो आपके फेलियर्स में भी आपका हाथ नहीं छोड़ते। और पापा, अगर आप सुन रहे हैं तो थैंक यू, सिर्फ मेरे फादर होने के लिए नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त होने के लिए।
2: मेरा नाम कृष्णा है और मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूँ तो एक बेटे के लिए उसके पापा उसके पहले हीरो होते हैं। हम लड़के जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम चुपचाप अपने पापा को नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि वो कैसे करके सारी टेंशन अकेले हैंडल कर लेते हैं और हम तक कोई परेशानी नहीं आने देते। मम्मी तो सामने से प्यार दिखा देती हैं, लेकिन पापा अपना प्यार अपनी मेहनत से और हमारे ज़रूरत पूरी करके दिखाते हैं। वो बाहर से भले ही हमें थोड़े सख्त लगें या हमें डांट दें, लेकिन वो ऐसे इसलिए करते हैं ताकि हम लाइफ में मजबूत बने और अपनी जिम्मेदारी लेना सीखें। जब तक पापा का हाथ हमारे सिर पर होता है तो अंदर से एक अलग ही हिम्मत मिलती है।
3: नमस्कार, मैं खुशबू यादव, बाराबंकी की निवासी। पिता वह मजबूत नींव है जिस पर बच्चों के सपनों की इमारत खड़ी होती है। एक बेटा अपने पिता से संघर्ष, जिम्मेदारी और आत्मसम्मान सीखता है। वहीं एक बेटी अपने पिता में अपना पहला दोस्त, पहला हीरो और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच देखती है। पिता अक्सर अपने प्यार को शब्द में व्यक्त नहीं करते, लेकिन उनका हर त्याग, हर मेहनत और हर चिंता बच्चों के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाती है। जब बच्चे गिरते हैं तो पिता उन्हें संभालते हैं, और जब बच्चे सफल होते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्व भी पिता को ही होता है। पिता वो दीपक है जो खुद जलकर घर को रोशनी करते हैं। पिता वो बरगद है जो धूप खुद सहकर बच्चों को छांव देते हैं। इसलिए हमें अपने पिता के त्याग, प्रेम और संघर्ष का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत लोग मिलते हैं लेकिन पिता जैसा निस्वार्थी साथी और मार्गदर्शक बहुत

0: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा एसआर यानी संतोष राव के साथ। और आइए अब बात करते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू संतोष।
0: अच्छा विनीता जी, अभी फादर्स डे मनाया गया, एक बात बताइए, जैसे माँ का रिलेशनशिप बेटी के साथ दोस्ताना होता है, वैसे पिता और बेटे का क्यों नहीं होता?
1: हाँ, ये तो है कि जितना बेटियाँ अपनी माँ के नजदीक होती हैं और जितना दोस्ती वो अपनी माँ से रखती हैं, माँ बेटी से रखती है, वो दोस्ती अक्सर पिता और बेटे में नहीं पाई जाती, क्योंकि पिता को अपने बेटों को जिम्मेवार बनाना होता है, घर का भार उठाना सिखाना है, उनको अनुशासित करना है, उनको गाइड करना है। तो अगर वो दोस्ती में रहेंगे तो फिर वो सब नहीं हो पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए अक्सर देखा गया है कि पिता जो होते हैं रौब से
0: जी,
1: और अनुशासन डिसिप्लिन से अपने लड़कों को पालते हैं।
0: अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर एक पिता का अपने बेटे के साथ एक दोस्ताना संबंध हो जाए तो आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान अपने आप ही निकल आएगा?
1: जी हाँ, फ्रेंडली तो हो सकते हैं, लेकिन इतने भी फ्रेंडली नहीं हो सकते, इतना भी दोस्ती नहीं कर सकते कि बेटा उनको फिर संजीदगी से ले ही ना, है ना
0: जी।
1: अगर प्रिंसिपल दोस्ती करने लग जाएगा तो कोई स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल की ना तो इज्जत करेगा ना तो उसकी सुनेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ सख्ती भी पेश करनी पड़ती है और अनुशासन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए बेटा बड़ा होके पूरा उसको घर संभालना है
0: जी।
1: तो दोस्ती मस्ती में वो शायद अपने पिता को सीरियसली ना ले, इसलिए पिता स्ट्रिक्ट रहते हैं।
0: बहुत सही कहा आपने विनीता जी। अच्छा, पिता और बेटे के बीच जो दूरियां देखने को अमूमन मिल जाती हैं, उसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं?
1: मुझे लगता है ये दूरियां इसलिए भी होती हैं कि कई बार पिता जाने अनजाने में बच्चों को, बेटों को खासतौर से चोट पहुंचा देते हैं। उनका मतलब नहीं होता है, पर ये होता है कि अक्सर वो ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं
0: जी,
1: बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। जिस तरीके से माएं अपने बेटों को बिगाड़ देती हैं, उस तरीके से पिता भी अपने बेटों पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर परिवार में हो, लेकिन अधिकतर ऐसा हो जाता है, जिसके कारण कई बार बेटे रिश्ता तोड़ देते हैं अपने पिता से या घर छोड़ के चले जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस, एक संतुलन, माता को भी इतना भी मुलायम नहीं होना चाहिए कि बेटे सीरियसली ना लें, और पिता को भी इतना सख्त नहीं हो जाना चाहिए कि बेटे रिश्ता तोड़ दें।
0: अच्छा, एक बेटे के लिए अपने पिता को आई लव यू बोलना समय समय पर कितना जरूरी होता है?
1: जो आई लव यू बोलना और अपने प्रेम और इज्जत का इजहार करना, वो तो बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है। और जिस तरीके से माता पिता अपने बुजुर्गों के साथ पेश आते हैं, पाया गया है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे हमारी सुनने से ज्यादा हमारे को देख कर चलते हैं, कि हम अपने बड़ों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से उनका ख्याल रखते हैं, वो हमको देख कर चल रहे हैं। तो अगर हम अच्छी रीति से अपने बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा ख्याल रखेंगे।
0: अच्छा विनीता जी, चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे?
1: चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगी कि पिता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है एक परिवार में, और बचपन की जो हमारी यादें होती हैं, जो हमारे जिस मोहल्ले में हम पले बड़े, उसमें तरह तरह के पिता मैंने देखे
0: जी।
1: अपनी सहेलियों के पिता, कोई बहुत गुस्से वाले थे, कोई बहुत मार पिटाई करते थे, कोई थे जो अच्छे थे, परिवार में प्यार से रहते थे। तो हम किस तरीके की यादें छोड़ के जा रहे हैं, जब पिता इस दुनिया से जाएगा तो बच्चे किस तरीके से अपने पिता को याद करेंगे? जैसे मेरे पिता जल्दी चले गए थे, 57 के थे, और मैं उनको आज भी बहुत याद करती हूँ। वो एक अध्यापक थे, लेखक थे
0: जी।
1: मैं बहुत याद करती हूँ उनको, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और आज वो ना बोलते हुए भी बहुत कुछ मुझसे बोलते हैं, हर एक मुद्दे पर बोलते हैं, हर एक विषय पर मुझे उनके विचार पता है। तो बहुत जरूरी है कि जो पिता की भूमिका है वो ये सोच कर निभाई जाए कि किस तरीके से बच्चे, बेटे बेटियां उन्हें याद करेंगे।
0: ओके।
1: और देखिए, हम किसी यूनिवर्सिटी से तो सीख कर आते नहीं है कि माता पिता का भूमिका किस तरीके से निभानी है। हम सब सीखते ही हैं, जीवन में सीखते हैं। आजकल तो फिर भी काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है कि हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो किस तरीके से हम एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग कर सकते हैं कि बच्चों को हम जिम्मेवार भी बनाएं, उनके साथ एक रिश्ता भी बना के रखें और ईश्वर के भय में हम अपने बच्चों का लालन पालन करें, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो ईश्वर ने हमको पिता होने के लिए, माता पिता होने के लिए दी है।
0: याद रखिए, कुछ शब्द अगर समय पर ना बोलकर देर से बोले जाएं, तो वो शब्द अपनी न सिर्फ अहमियत खो देते हैं बल्कि वो शब्द अधूरे भी रह जाते हैं। इसीलिए अगर आप एक पिता हैं तो अपने बेटे से एक दोस्त बनकर बात कीजिए, और अगर आप बेटे हैं तो बिना वक्त गवाए अपने पिता को कह दीजिए, आई लव यू। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका अपने बेटे के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित हो जाए, तो आप हमारे काउंसलर से जरूर बात करें। हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज के द्वारा बात करने के लिए हमारा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दिशा फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन देकर उनकी जिंदगियों को संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं और आकाशवाणी रेनबो पर आज ये बहुत ही स्पेशल एडिशन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। वैसे तो बुधवार का हर जो हमारा एडिशन होता है अल्फा जन का वो स्पेशल होता है और एक बार फिर से एक और बहुत ही स्पेशल कॉलेज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। भाई नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल। और कैंपस कॉलिंग के आज के एडिशन में हम कहां पहुंचे, हम नहीं पहुंचे, इनफैक्ट मेरी सहयोगी पहुंची। मेरी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची मिरांडा हाउस कॉलेज। मिरांडा हाउस कॉलेज जो कि अक्सर जो है CUET एस्पिरेंट्स की लिस्ट में बहुत ऊपर रहता है और जितनी भी हमारी महिला छात्र हैं वो सभी जो है इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी वजह होती हैं हर कॉलेज की अचीवमेंट्स के पीछे, बहुत सी वजह होती हैं हर कॉलेज में जाने की, हर कोर्स को चुनने की। कोर्स वर्सेज कॉलेज, CUET के एग्जाम्स, आपके ट्वेल्थ के एग्जाम्स के मार्क्स एंड यू नो बहुत सारी चीजें जो है ना इस समय पे आप सबके दिमाग में जो है वो घूमती रहती हैं। एंड ऑब्वियसली एडमिशन्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इस समय में। तो एडमिशन्स के इस फीवर के दौर में जब हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची मिरांडा हाउस कॉलेज तो वहां पे उनकी मुलाकात हुई ना केवल वहां की फैकल्टी से, वहां के प्रिंसिपल से, बल्कि वहां पे आए हुए स्टूडेंट्स से, एस्पिरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से और बहुत सारे लोगों से। आइए जानते हैं कि हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा जब पहुंची मिरांडा हाउस कॉलेज तो ने वहां पे किस किस से बात की।
1: हेलो, मेरा नाम है ऋचा, अल्फा जन कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में आज मैं आई हूँ सभी लड़कियों का ड्रीम कॉलेज मिरांडा हाउस। इस ओपन हाउस सेशन की जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आशिमा खरे मेरे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर।
2: थैंक यू ऋचा, थैंक यू सो मच।
1: मैम ओपन हाउस आप हमें जरा समराइज करके बताइए।
2: स्टूडेंट्स, गर्ल्स पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। वो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे उनकी क्वेरी सॉल्व हो चुके दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जैसे कि सब्जेक्ट कैसे चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट उनके करियर के लिए अच्छा है। पेरेंट्स आर आल्सो वेरी एक्साइटेड कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। सो ओवरऑल दे आर क्यूरियस आल्सो, एक्साइटेड आल्सो।
1: पेरेंट्स ज्यादा एक्साइटेड है या बच्चे ज्यादा एक्साइटेड है?
2: सी पेरेंट्स तो मुझे थोड़े से वरिड भी लग रहे हैं, ठीक है। बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनके पास CUET रॉ स्कोर है, एक आइडिया उनके पास है क्योंकि लास्ट कट ऑफ बच्चों ने देखी है कि कौन से कॉलेज में कितना जाता है और कितना जा सकता है मैक्सिमम।
1: अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स पूछते हैं।
2: सी सब्जेक्ट मैपिंग को लेके भी एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करें। सी हमारे पास दिल्ली NCR से भी बच्चे आ रहे हैं तो गुड़गांव से वो वहाँ पे जहाँ जो भी कॉलेज वो चूज कर रही है वहां से वो आना जाना कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। वो ये भी प्रेफरेंस है कि हमारे घर के आसपास अगर DU का कोई कॉलेज है वहां पर भी हम एडमिशन मिले तो वहां पे भी प्रेफर करेंगे।
1: और मैम अगर किसी की यूनिवर्सिटी में जान पहचान है, किसी टीचर से जान पहचान है, किसी प्रिंसिपल से जान पहचान है, या यूनिवर्सिटी घूमते हुए कोई उन्हें कह दे कि हम एडमिशन करवा देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस में, तो क्या करना चाहिए उन्हें?
2: बिल्कुल मत सुनिए, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। जो रूल्स हैं वो सबके लिए हैं। आपने CUET एग्जाम दिया है, आप एलिजिबल हो, आपके स्कोर आए हैं, आप एलिजिबल हो, लेकिन कॉलेज का कट ऑफ क्या जाता है या कॉलेज में कौन से स्कोर पे एडमिशन होता है वो आप पिछले स्कूल से, पिछले साल के जो स्कोर्स हैं या एडमिशन जिस भी स्कोर पे हुए हैं उससे आप एनालाइज कर सकते हो, पता कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। तो प्लीज किसी की बातों में मत आए, रूल्स रेगुलेशंस पढ़ें ध्यान से, वेबसाइट को देखें समझें और फिर ही आपको डिसीजन लें।
1: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर कि ये सुनने के बाद बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज ऐसी ही सॉल्व हो गई होगी। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू।
1: अल्फा जन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ मिरांडा हाउस और यहाँ के ओपन हाउस सेशन में एक पेरेंट्स से मैं बात कर रही हूँ। सर आपका नाम क्या है?
3: कुलदीप त्यागी।
1: सर अपनी बेटी के लिए कॉलेज चूज करते वक्त आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी?
3: मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि यहाँ पर कितना उसको एक्सपोजर मिल सकता है। सेकंड इज फैकल्टी, बिकॉज फैकल्टी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। सेकंड ओवरऑल एनवायरमेंट, like how the teachers are behaving, how the kids are respecting teachers and everything.
1: So Miranda House ke bare mein aapko kaise pata laga?
3: Miranda ke bare mein I would say it's one of the top ranked college. If you look at the NIRF ranking, it is at the top level position.
1: Sir, humse baat karne ke liye aapka bahut bahut dhanyawad. Aapki beti ke liye dheron shubhkamnaye hamari taraf se.
3: Thank you.
1: And kya naam hai aapka?
4: Mera naam Abha Sharma hai. मैं अपनी डॉटर के साथ आई हूँ।
1: आप अपनी बेटी के लिए कॉलेज चूज करने जा रही हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रही हैं और आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी के लिए किस तरह का कॉलेज आप ढूंढ रही हैं?
4: बिल्कुल, ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है कॉलेज ढूंढना, क्योंकि मेरी डॉटर है तो सेफ होना चाहिए सबसे पहली चीज। तो दूसरा जो कोर्सेज है जिसमें वो अप्लाई करना चाहती है उसकी फैकल्टी कैसी हो, अप्रोचेबल हो थोड़ा कॉलेज, ताकि कोई अगर बीच में प्रॉब्लम आती है तो फैकल्टी इस तरीके की हो कि हम उनसे बात कर सके।
1: और मैम एक ऐसी सीख जो आप अपनी बेटी को देना चाहती है उसकी बेटर कॉलेज लाइफ के लिए?
4: बी बोल्ड, ऑलवेज फॉलो रूल्स एंड गाइडलाइंस गिवन बाय योर पेरेंट्स टुवर्ड्स टीचर्स, और अगर कोई भी बात होती है किसी लाइफ पे, किसी भी उस पे पड़ाव पे अगर कोई भी मुश्किल आती है, तो अपने पेरेंट्स पे फेथ जरूर रखना है, आके उन्हें जरूर वो बातें बतानी है।
1: मैम पेरेंट्स से तो हम हमेशा सीखते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कोई एक ऐसी बात जो आपकी बेटी ने आपको सिखाई हो?
4: बेटी ने बहुत सारी बातें सिखाई है मुझे। सबसे बड़ी बात जो मैंने उससे सीखी है, मतलब वो हमेशा मेरी सपोर्ट बनी है जब भी मुझे जरूरत पड़ी है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही वो मुझे भी समझे, जब उसको जरूरत पड़े तो मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर।
1: चलिए मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी बेटी को मनचाहा कॉलेज मिले ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
4: थैंक यू।
1: क्या नाम है आपका?
5: माय नेम इज आशीष सिंह।
1: सर आज मंडे है, आज से ऑफिस स्टार्ट होते हैं, कल छुट्टी थी, और आज आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ पर ओपन हाउस अटेंड करने आए हैं। सर हाउ मच दिस इज इम्पोर्टेंट टू यू?
5: इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरी डॉटर ने अभी 12th पास किया है और सीईटी का एग्जाम है और रिजल्ट भी उनका कल आ गया है। तो किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है कि उसका नेक्स्ट जो आफ्टर कंप्लीटिंग 12 इयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन वो कॉलेज में जाएंगे, आगे उसके आगे क्या पढ़ेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसी को हम कहते हैं कि हमने अपने टाइम पे जब एजुकेशन करी थी वो एक डिफरेंट थी, और आज की डेट में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसके हिसाब से काफी चेंजेस हैं, तो वो सब हम समझ रहे हैं इस सेशन में। टीचर्स से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल मैम भी हैं, उन्होंने भी हेल्प करी, तो इससे काफी क्लैरिटी आती है पेरेंट्स को भी, और बच्चे को भी सही कोर्स और सही कॉलेज चुनने में बहुत हेल्प होती है।
1: सो व्हाई मिरांडा हाउस?
5: मिरांडा हाउस डेफिनेटली हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ, इट्स अ कॉलेज ऑफ मोर देन 75 इयर्स ओल्ड, एंड इट हैज very good academic faculty, it has a great legacy, excellent faculty, excellent infrastructure. आज हमने जब tour किया कॉलेज का तो हमने देखा कि लाइब्रेरी में 10,000 से ज्यादा किताबें हैं, उनके पास मल्टीपल कैंटीन्स हैं, प्लस वो मटीरियल को भी रीयूज कर रहे हैं। ये सब इनिशिएटिव एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन लेता है।
1: सर कहते हैं कि बेटियां और जो फादर हैं, जो डॉटर और फादर का जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो बहुत ही स्पेशल होता है। सो आई एम श्योर कि आपकी बेटी का उसके साथ भी आपका एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड होगा। तो ऐसी कौन सी खास बात है उसमें जो जिसे आप बताना चाहेंगे?
5: मेरे को जो मेरी डॉटर काशवी में लगता है कि वो शुरू से ही बहुत ही क्लियर है अपने ऑप्शंस को लेकर। जैसे उसने 12th किया, उसके बाद उसने हमारे से इंटरनेशनल रिलेशंस में जाने की बात करी और UN में जाने की बात करी, तो मेरी और मेरी वाइफ के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट और नई चीज। तो मैं ये कहूंगा कि आजकल लड़कियां ज्यादा फोकस भी होती हैं, और मेरी डॉटर में मुझे ये भी दिखा कि उसकी बहुत क्लियर उसका प्लान है कि उसको आगे करियर में क्या करना है, तो ये चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर चीजों को आप सिंपल

0: क्लियर हैं, दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन सर। आगे वो बहुत सक्सेस पाएं, बहुत सफल हो, आपको बहुत प्राउड फील करवाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सर। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: क्या बात है, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि पेरेंट्स और बच्चे भी हैं जो कि एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे में उन क्वालिटीज को एडमायर करते हैं। वैसे कहते रहना ना बहुत अच्छा रहता है, तो अगर आप भी एक पेरेंट हैं और एक टीचर हैं, देन ऑब्वियसली एनकरेजमेंट ना ऐसे ही वर्ड्स से आती है, ऐसे ही शब्दों से आती है, बताते रहना चाहिए। और जब आप कुछ अच्छा उनमें देखें तो तारीफ जरूर करें। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल। हम आज आपको सैर करवा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में से एक बहुत बड़ा नाम जिसे हम कहते हैं, वो है मिरांडा हाउस, उसकी हम आपको सैर करवा रहे हैं। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा वहां पर पहुंची हैं और उन्होंने वहां पर अभी आपको सुनाया कि किस तरह से जो एस्पिरेंट्स हैं वहां पर ओपन हाउस अटेंड कर रहे हैं। इसके बाद और इसके अलावा और बहुत कुछ है हमारे पास आपको सुनवाने के लिए। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति एक बार फिर से आप सभी के साथ। और मैं आपको बताना चाहती हूं एक बहुत ही खास बात, स्वाध्यायन प्रमदितव्यम, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वैदिक वाक्य है और ये उपनिषद से लिया गया है और ये पाठ है उस कॉलेज के लोगों का जहां की सैर हम आपको करवा रहे हैं। वैसे इस वाक्य का मतलब होता है कि आपको अपनी स्व अध्याय यानी कि स्वयं के अध्ययन से या उसके ज्ञान अर्जन से ना कभी भी आपको आलस नहीं करना चाहिए, कभी भी उससे प्रमाद नहीं करना चाहिए जी। और इसका मतलब यह है कि अपनी सेल्फ ग्रोथ को आप लगातार बढ़ाते रहें, अपनी सेल्फ लर्निंग को जो है लगातार बढ़ाते रहें और जिंदगी की एक तरह से कहना चाहिए कि जो नॉलेज है, लर्निंग है, इन सबसे उसको एनरिच करते रहें। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे मिरांडा हाउस की सैर करवा रहे हैं हम आपको आज के हमारे इस प्रोग्राम में। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची वहां पर और वहां पे उन्होंने बहुत सारे एडमिशन के समय पे जो सरगर्मी चल रही होती है ना, बहुत सारे वो है जो उन्होंने कैच की है। आइए जानते हैं कि अगली बातचीत उन्होंने किससे की।
1: अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ मिरांडा हाउस और ओपन हाउस में स्टूडेंट मुझे मिली है। क्या नाम है आपका?
2: महक।
1: महक, आप उन्हें अभी भी 12th पास किया है?
2: हाँ जी।
1: कैसे मार्क्स आए आप?
2: मेरे 87% है।
1: तो आगे आप कौन सा कोर्स लेने की सोच रही हैं कॉलेज में?
2: बीएससी ऑनर्स मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स।
1: तो मिरांडा हाउस आपकी पहली चॉइस है?
2: हाँ जी।
1: मिरांडा हाउस ही क्यों?
2: मैम यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और करिकुलम और हर चीज अच्छी है, मतलब बाकी कंपैरिजन में। पर से अगर गर्ल्स कॉलेज का देखा जाए तो उसमें भी सबसे टॉप पे यही कॉलेज है, साइंस स्ट्रीम के लिए बहुत अच्छा है।
1: अच्छा, इस कॉलेज के बारे में पता कैसे लगा आप?
2: दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब कॉलेज के लिए मैं विजिट कर रही थी तब मैंने इसके लिए सर्च करा था।
1: अच्छा, आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉलेज कैसा होता है, एक अच्छे कॉलेज में क्या क्या होना चाहिए?
2: मैम बच्चों को जो भी चाहिए मतलब वो प्रोवाइड करे कॉलेज, और प्लेसमेंट्स अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो और बाकी सोसाइटीज वगैरह भी अच्छी हो, वैसा सब।
1: TUG का एग्जाम भी आया आपने?
2: हाँ जी।
1: कैसा एक्सपीरियंस रहा?
2: अच्छा था, मतलब आ जाएंगे नंबर लगता
1: था। तो आपका ड्रीम करियर क्या है, क्या बनना चाहती हैं आप?
2: एक्चुअली मैं डिजाइन में परस्यू करना चाहती हूँ बट मैं एक स्टडी वाली डिग्री भी लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं मैथ्स से लेकर रही हूँ।
1: चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बेस्ट विशेस, आपका फेवरेट कॉलेज, आपका फेवरेट कोर्स मिले आपको।
2: थैंक यू मैम।
1: आपका नाम क्या है?
3: स्वाति।
1: स्वाति, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा CUET का?
3: मैम बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस CUET का, स्कोर्स भी सही आए हैं मेरे अभी तक, रॉ स्कोर्स जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, बाकी आगे अब देखते हैं रिजल्ट आएगा उसके बाद।
1: अच्छा, अब स्कूल छूट रहा है, आप लोग कॉलेज में आ रहे हैं, क्या कैसा मतलब कॉलेज के बारे में आपके क्या ड्रीम्स
3: हैं? मैम सच कोई ड्रीम्स तो नहीं है बट लगता ही है नया स्पेस,
1: इमेजिनेशन होती है ना एक, हमारा कॉलेज ऐसा होगा जैसे हमने मूवीज में देखा है।
3: मैम है मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत सारी है एकेडमिक्स के साथ, मेरे को ऐसा कॉलेज चाहिए।
1: अच्छा, तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि कोई एक बात स्कूल की मैं पूछूं कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो स्कूल की सीख आप कॉलेज में भी कंटिन्यू रखेंगी?
3: डिसिप्लिन, और उसके अलावा अपना काम सही से करना।
1: क्या बात है, बहुत सारी हमारी तरफ से गुड विशेस आपको।
3: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू। क्या नाम है आपका?
4: अविका।
1: अविका, 12th में कैसा रहा आपका रिजल्ट?
4: 12th में अच्छा था, 97%।
1: ओके, तो इतने अच्छे मार्क्स के बाद क्या आपका प्लान है?
4: अभी तो फिलहाल DU एंड मिरांडा ही मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, प्राइमरीली बिकॉज रिसर्च में जाना है आगे MSc एंड PhD का और सोचा है, एंड आई हैव हर्ड कि DU में alumni नेटवर्क भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड प्लस नॉर्थ कैंपस में स्पेशली काफी ज्यादा कनेक्टिविटी एंड सोशलाइजिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है।
1: अच्छा, आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, व्हाट डू यू थिंक, इज इट हार्मफुल और इज यूजफुल?
4: डेफिनेटली इट्स अ टूल, बट इट्स अ टूल दैट शुड बी यूज्ड रियली केयरफुली, देयर आर अ लॉट ऑफ साइबर स्कैम्स, बट देन अगेन वी हैव साइबर सिक्योरिटी एज वेल, सो या इट शुड बी यूज्ड रियली केयरफुली।
1: अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिल जाए तो आपको कौन से सुपर पावर चाहिए और उससे क्या करना चाहेंगे आप?
4: इनविजिबिलिटी, फिर मैं सब पैसे चेक करती रहूंगी।
1: अच्छा, तो अभी आप अपना कॉलेज सर्च कर रही हैं और कॉलेज के फर्स्ट डे, जैसे कि हम बहुत सारी मूवीज में देखते हैं कि बहुत सारी फैंटेसीज होती हैं कॉलेज को लेकर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा होगा?
4: मन तो मेरा भी है कि मैं ऐसे बाल उड़ाऊं कि सिर्फ चार लोग हों, पर मतलब ऐसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जो मैंने कॉलेज चूज किया है वो मेरे को पसंद आए एंड आई हैव अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स।
1: चलिए, ऐसा ही हो, हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि जैसा आपका सपना है, जैसा सोचा है, वो सब कुछ सच में हो।
4: थैंक यू।
1: आपका नाम क्या है?
4: तनिष्का।
1: तनिष्का, आपके क्या ड्रीम्स हैं?
4: मेरे को रिसर्च में जाना।
1: रिसर्च में जाना है और किस सब्जेक्ट में?
4: बायो से रिलेटेड कुछ भी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, न्यूरोलॉजी कुछ।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपकी हॉबीज क्या क्या है?
4: मेरी हॉबीज, मैंने अभी भी रिसेंटली क्रोशे करना सीखा है और मेरे को डांस पसंद है और मतलब अभी मेरे को स्विमिंग भी सीखनी है, मतलब आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग ऑल द हॉबीज। आई थिंक आई लाइक लर्निंग.
1: ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जो भी आपके सपने हैं वो जरूर पूरे हों. आप इतनी हार्ड वर्किंग हैं क्योंकि आपने कहा आप इतने सब्जेक्ट्स पढ़ती हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ती हैं, इतनी सारी हॉबीज परस्यू करती हैं. आई एम श्योर आपको जो चाहिए वो जरूर मिले. थैंक यू सो मच हमसे बात करने.
4: थैंक यू.
1: आपका नाम क्या है?
4: दीपिका.
1: दीपिका, इस बार आपने 12th का एग्जाम दिया है.
4: यस.
1: कैसे मार्क्स है?
4: 93.8%.
1: तो आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं?
4: आई एम प्लानिंग टू डू इंग्लिश ऑनर्स एंड देन डू मास्टर्स इन इंग्लिश बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश.
1: फिर मैं कहूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें जो कोई ऐसे इंग्लिश के राइटर हो जिनके साथ आपको एक दिन बिताने का मौका मिले, तो इंग्लिश राइटर कौन सी होंगे?
4: इट हैज टू बी शेक्सपियर बिकॉज आई लव हिज प्लेस. The twist, the turns of his plays, fantastic. I have also participated in Shakespeare plays in my school. So,
1: जो college अब start होने वाले हैं, the one thing that really makes you excited about the college life?
4: It is the freedom to do whatever we want. Because, और अगर मैं कहूँ कि एक word में आपको खुद को define करना है, in just a word, तो वो क्या होगा? I think that will be discipline because I was the discipline captain in my school.
1: आपका नाम क्या है?
4: दीक्षा.
1: दीक्षा, आपका कैसा score रहा इस पर 12th में?
4: 96.8.
1: And what's your future plan?
4: I am planning to do geography honors.
1: अच्छा, तो क्योंकि आप geography में interested हैं, तो मुझे बताइए इंडिया की ऐसी 5 अलग अलग geographical places जो कि tourism के लिए भी बहुत best.
4: Thar desert, Himalayas हो गए हमारे, eastern Himalayas beauty जो north east की beauty है, south के beaches, plateaus, Deccan plateaus.
1: तो चलिए आपको success मिले and आप सब कुछ अचीव करें जिस जिसका आपने dream देखा है, ये हमारी शुभकामनाएं. Thank you so much हमसे बात करने के लिए दीक्षा.
4: थैंक यू सो मच.
1: क्या नाम है आपका?
4: अंशिका त्यागी.
1: अंशिका, कैसी तैयारी चल रही है आपकी कॉलेज में आने की?
4: इट्स गुड, आई एम वेरी एक्साइटेड. सब शॉपिंग वगैरह चल रही है एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट.
1: ओके, तो कौन सा कोर्स आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में है?
4: कोर्स ऑफ कोर्स जूलॉजी, देन बॉटनी एंड देन लाइफ साइंस.
1: एंड कॉलेज की बात करें तो
4: कॉलेज ऑफ कोर्स मिरांडा हाउस सबका टॉप पे रहता ही है.
1: अच्छा, आपने ओपन हाउस अटेंड किया?
4: या.
1: कैसा रहा आपका?
4: It was a good experience.
1: क्या क्या सीखा आपने यहाँ से? क्या हेल्प हुई आपको?
4: I had a question in which was related to some guidance I needed and it was definitely well answered by the head of the zoology department, Vashishth ma'am, as far as I remember.
1: तो यानी आपकी सारी queries यहाँ के solve हुई और ये word ही लगा आपको आना?
4: Yeah, definitely.
1: Your all dreams comes true. ऐसी हमारी शुभकामनाएं. Thank you so much for talking.
4: Thank you so much.
1: क्या नाम है आपका?
5: ऊर्जा.
1: ऊर्जा, क्या करना चाहती हैं आप लाइफ में?
5: मेन तो मेरा साइकोलॉजी ही परस्यू करना है. हाउएवर मिरांडा में वो कोर्स नहीं है, सो माय सेकंड ऑप्शन वाज पॉलिटिकल साइंस, दैट्स व्हाई आई केम फॉर दिस. बट मेन अगर मैं बोलूँ तो साइकोलॉजी परस्यू करना है.
1: साइकोलॉजी क्यों?
5: साइकोलॉजी मेरे को पता, अगर 11th में आई टुक साइकोलॉजी था सब्जेक्ट एंड तब तक तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था साइकोलॉजी करने में. बट मैंने जैसे सब्जेक्ट पढ़ा वो, तो मतलब मेरे को जेन्युइनली सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट भी वो इतना अच्छा लगा. एंड यू नो, आप उसमें नए नए लोगों से मिलते हो एंड आपको मतलब नई नई चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलती है. आई थिंक मतलब आई रियली लाइक साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. तो
1: कहते हैं साइकोलॉजी जो है वो मन का विज्ञान है. तो अच्छा, ये बताइए कि जब अभी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, आपको कभी स्ट्रेस होता है, तो आप उससे कैसे कॉप अप करती है?
5: आई थिंक माई बेस्ट वे वुड बी, मैं टीवी देखती हूँ. दैट इज माई वेरी बिग स्ट्रेस रिलीवर, टीवी देखना. या फिर आई हैव स्केचिंग एज अ हॉबी. मतलब मैं ऑलमोस्ट बचपन से लाइक 5-7 साल की उम्र से वो कर रही हूँ. तो ड्रॉइंग करना मेरे को बहुत पसंद है, तो दैट इज माई वेंटिंग आउटलेट की ड्रॉइंग करो, स्केचिंग करो, गाने सुनना.
1: आजकल हर एक चीज के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो AI का यूज करते हैं. आप उसे कैसे देखती हैं? ये एक चैलेंज है या एक बून है या एक कर्स है स्टूडेंट्स के लिए?
5: मेरे लिए ऑनेस्टली AI के लिए कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस, बिकॉज मैं एज अ स्टूडेंट भी अपनी डे टू डे लाइफ में वो यूज करती हूँ. एंड आई थिंक इट मैटर्स कि आप किस एक्सटेंट तक यूज कर रहे हो. अगर आप अपने लाइफ टू लाइफ हर एक चीज के लिए उस पर डिपेंडेंट हो, कि आप किसी पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको जेन्युइन रिसर्च करनी है, आप उस पर भी AI पे डिपेंडेंट हो, देन इट्स रियली हार्मफुल. बिकॉज उससे आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हैम्पर करे, क्योंकि जो आप रिसर्च करके करते हो, जो आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, वो आप अगर AI में डालोगे, yes, वो इफेक्टिव है, बट आपकी फिर मतलब इट्स लाइक कि आपका कोई ब्रॉड बेस, मतलब आप कुछ नई नई चीजें एक्सप्लोर नहीं कर रहे. आपने बस एक वो फॉर्म डाला, उसने आपको उतने ही आंसर दे दिए. इंस्टेड अगर आप रिसर्च करोगे, आपको 10 और नई चीजें पता चलेंगी जो शायद आपको AI से ना पता चलती.
1: वैसे तो ये जो हमारा प्रोग्राम है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग, इसमें हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई करनी ना हो, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगी?
5: अगर बिल्कुल ही ना करनी हो तो आई फील लाइक आई वुड टर्न ड्राइंग एंड आर्ट इनटू अ करियर, बिकॉज वो मेरा बहुत बचपन का ही पैशन है. एंड मतलब इट्स लाइक अ वेरी क्रिएटिव फील्ड में ना, कंपटीशन वगैरह एंड स्कोप बहुत थोड़ा कम रह जाता है.

0: जाता है उसमें जाकर। तो मैंने कभी मतलब अपनी आर्ट वगैरह को ऐसे प्रोफेशनल मैनर में कभी देखा ही नहीं। तो अगर पढ़ाई लिखाई नहीं हो तो मैं ऑब्वियसली अपने पैशन को फिर करियर में करना चाहूंगी।
1: क्या बात है, जो भी आपकी प्लानिंग्स है वो सारी एग्जीक्यूट हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस।
0: थैंक यू सो मच फॉर।
2: इसे कहते हैं हाउस द जोश। हाई सर, ऑब्वियसली बहुत ही हाई स्पिरिट्स हैं, बहुत ही हाई जोश है, क्योंकि एंटर करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एस्पिरेंट्स हैं और मिरांडा हाउस में हो रहे ओपन हाउस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। हमारा ये प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन डेडिकेटेड है हमारी कैंपस लाइफ को, हमारी स्टूडेंट लाइफ को, और इन सभी कैंपसेस में, इन सभी कॉलेजेस में जहां की अपनी अलग अलग पहचान है, अपने अपने लेगेसीज हैं और अपने अपने आइडियल्स हैं, अपने विजन्स हैं और मिशन्स हैं। वैसे जहां पर मिरांडा हाउस की बात करते हैं, वहां पर हमारे सामने आंखों के आगे जो आता है और जो यहां के स्टूडेंट्स की आंखों के आगे आता है वो है हायर एजुकेशन, हाई गोल्स, हाई आइडियल्स और उसके साथ साथ हाई लेवल ऑफ सक्सेस एंड ऑब्वियसली उसका रिकॉग्निशन भी। लेकिन सबके बेस में होती है एक चीज और वो है हाई लर्निंग। जी हाँ, 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं रुक रही हूं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं इस ब्रेक के बाद।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
4: आकाशवाणी रेनबो।
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
5: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
8: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
9: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
8: क्या ये जांच उपलब्ध है?
10: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
11: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
10: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
11: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
12: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
13: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
14: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
15: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
16: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
15: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
17: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
5: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
6: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
5: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
6: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
7: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
18: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
4: आकाशवाणी रेनबो।
2: म्यूजिकली योर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और हमारा ये प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग पहुंच रहा है आप तक हमारे यहाँ के ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो से। और आज जहां पर पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा, वो है मिरांडा हाउस कॉलेज। और मिरांडा हाउस कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा एस्टैब्लिश्ड भी है और मेंटेन्ड भी। अगली बातचीत जो ऋचा ने की वो की यहाँ के प्रिंसिपल से, और आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है।
19: आज मैं आई हूँ अल्फा जन कैंपस कॉलिंग में मिरांडा हाउस, और मेरे साथ इस कॉलेज के प्रिंसिपल मैम है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम अल्फा जन में।
20: थैंक यू रिचा। मैं प्रोफेसर विजयलक्ष्मी नंदा, प्रिंसिपल ऑफ मिरांडा हाउस हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अल्फा जन के माध्यम से आपके साथ बात कर रही हूँ।
19: मिरांडा हाउस, मैम ये किसी भी कॉलेज के नाम जैसा नहीं लगता, मिरांडा हाउस के नाम के पीछे की क्या हिस्ट्री है?
20: मिरांडा हाउस का नाम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा रिचा, ये सबको ही हमें पूछता है। और हमने कभी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी, हम भी जब इस कॉलेज में ज्वाइन किए थे एज ए टीचर, आई वांटेड टू नो कि क्यों मिरांडा हाउस। तो हमें जो पता चला, यहाँ के जो फर्स्ट, हम मॉरिस गॉयर ने इस कॉलेज को किया, जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट की और उन्होंने ही नाम दिया। जब उन्होंने नाम दिया तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, वेदा ठाकुर दास जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे, उन्होंने लिखा था कि तुमको अब सबको ही पूछेंगे कि इसका नाम मिरांडा हाउस क्यों है, तो तुम्हें तीन तरह से इसका आंसर देना है। नंबर वन, ये पहले हॉस्टल बना था और हॉस्टल का जो ब्लॉक है वो पहले बना था, तो इसीलिए हाउस फॉर गर्ल्स हु आर स्टडिंग इन दिस कॉलेज, तो मिरांडा हाउस इसीलिए था। सेकेंड जो पॉइंट था, उन्होंने टेम्पेस्ट, शेक्सपियर की जो प्ले है टेम्पेस्ट, उसकी जो कैरेक्टर है मिरांडा, उस पे बेस किया था, उसके क्वालिटीज ऑफ इनोसेंस ऑफ करेज, उसको एग्जेम्प्लीफाई करते हैं मिरांडियंस, तो मिरांडा। उनके जो फेवरेट एक्ट्रेस थी वो थी कार्मेन मिरांडा, तो उन्होंने उनका बताया। बाद में उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी मिरांडा रखा था, तो यही सब कारण था कि मिरांडा नाम रहा, और हाउस बिकॉज ये बिगिन किया एक हॉस्टल होके, जो स्टूडेंट्स के हॉस्टल, और बाद में इसकी टीचिंग ब्लॉक्स बनी।
19: मैम ये कॉलेज जो है ये सभी का ड्रीम कॉलेज है, तो मैम ऐसी क्या खास बात है इस कॉलेज में कि हर एक स्टूडेंट इस कॉलेज का एक पार्ट बनना चाहता है?
20: बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि किस जो स्टूडेंट्स है वो मिरांडा हाउस को अपना ड्रीम कॉलेज मानते हैं। एक तो पहली बात, इसकी लेगेसी है। 1948 में जब एस्टैब्लिश किया गया तब ये लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस की भी थी और साइंस कॉलेज फर्स्ट थी। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, और गवर्नमेंट कॉलेज के होने के नाते यहाँ पे जो फर्स्ट जो वीमेन आए उन्होंने नेशन बिल्डिंग में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो ये है लेगेसी ऑफ विमेन्स लीडरशिप, ये पहली चीज है। सेकंड चीज है कि जो सिर्फ लेगेसी पे ये रेस्ट नहीं किए, उसके आगे बढ़ाते गए, कॉलेज की डायनेमिज्म बढ़ी, यहाँ की जो एल्युमिनाई है, जो टीचर्स है, इनकी कहानी दूर दूर तक गई। अभी तो सोशल मीडिया है, उस समय ये नहीं था, लेकिन हमारी एल्युमिनाई ही हमारे स्पोक्स पर्सन थे, ये लोग साइंटिस्ट बने, पोलिटिकल लीडर्स बने, तो कहानी हर तरह से अच्छी ही थी, और इसीलिए इस कॉलेज के लोग पार्ट बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये एस्टैब्लिश जो इसका जो नाम है, और एनआईआरएफ की रैंकिंग भी इसकी टॉप कॉलेजेस में रही हर समय, तो ये सब कारण है कि मिरांडा हाउस की इस तरह की सेलिब्रेशन है।
19: मैम इतना नाम होने के बाद भी इस कॉलेज ने इनिशिएट किया ओपन हाउस सेशन, इसकी क्या वजह है?
20: हाँ, ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आप में तो एडमिशन की कोई इश्यू नहीं आती होंगी, तो आप क्यों ये ओपन हाउस किए? तो इसके कारण भी कुछ थे। पहली बात ये थी कि हमें काफी पेरेंट्स के फोन्स आते थे, और कुछ स्टूडेंट्स के भी जो क्लास 12 पास की, कि हमें बता दीजिए, गाइड कर दीजिए, हम सीयूटी फॉर्म भरना चाहते, तो हम उनको इंडिकेट करते थे, आप डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीद गांधी के बहुत अच्छे वीडियोज है, आप वो देखिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ओपन हाउस ओरिएंटेशन होता है, उसमें आप आइए। फिर भी मुझे लगा कि नीड बहुत ज्यादा है, और पहले हमारे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो जाती थी एडमिशन के दौरान, अब वो नहीं होती है क्योंकि ऑनलाइन हो रहा था, तो मुझे लगा कि ये एक मौका है कि हम उन पेरेंट्स को मिले, उन डॉटर्स को मिले, डॉटर्स आर डूइंग द बेस्ट इन 12th रिजल्ट्स, कि उनको मिले। किसी भी कारण ये फॉर्म फिलअप या कोर्स या कॉलेज की जो प्रॉब्लम्स आती है कि मैचिंग में वो गलती हो जाए, इसके लिए किस कोई स्टूडेंट मिरांडा हाउस से वंचित हो जाए, हम ये नहीं चाह रहे थे, इसीलिए ये ओपन हाउस।
19: मैम जो स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में आना चाहते हैं, जो पहली बार आएंगे, उनके लिए आपकी एक सलाह क्या रहेगी?
20: जो पहली बार मिरांडा हाउस आएंगे उनके लिए मेरी यही सलाह है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होके आइए, और जो टीचर्स आपको बोल रहे हैं उसको बिल्कुल आप फॉलो कीजिए। दूसरी जो मेन चीज है, आप जब कॉलेज में आते हैं, आप इसके एम्बियंस अपने पियर्स के साथ, आप वेबसाइट जरूर देखें आने से पहले, क्या सब्जेक्ट्स है, किस तरह की सोसाइटीज है, ड्यू के रूल्स को भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए, अटेंडेंस रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने सोसाइटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो देख लीजिए। क्लासरूम टीचिंग पे आप बिल्कुल भरोसा कीजिए और ये मत सोचिए कि चलो कोई बात है हम एडमिशन ले लिए कहीं इंटर्नशिप कर लेते। तो कीप इन माइंड अटेंडेंस इज अ मस्ट।
1: मैम आपने इतनी अच्छी सलाह दी स्टूडेंट्स को। मैम आई एम श्योर जब आप एक स्टूडेंट रही होंगी तो उस वक्त आपके भी कोई गोल्डन मंत्रास होंगे जो आज आप पास ऑन करती हैं अपने स्टूडेंट्स को। मैम वो गोल्डन मंत्रास आपके क्या है जो आज स्टूडेंट्स को भी फॉलो करने चाहिए?
20: मेरे जो गोल्डन मंत्रास है, मैं तो अभी तक अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ तो मेरा गोल्डन मंत्र है इनेट क्यूरियोसिटी। मुझे हर समय सब चीज के बारे में बहुत जानकारी रखने का इच्छा होता है। सेकेंडली मेरा कहते हैं कि आई ट्रस्ट की सॉल्यूशंस हैं और मुझे मिल जाएंगे। मैं सिनिकल या क्रिटिकल उस तरह से डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिलीव नहीं करती, तो मैं कहूंगी कि होप रखना बहुत जरूरी है। थर्ड जो मेरा गोल्डन मंत्र यह था कि अगर कोई चीज गलत हो रहा है तो उससे भी अगर हम कुछ सीख सकते हैं, चलो आई फेल्ड तो इससे मुझे कुछ अगर सीखने को मिलेगा तो मैं सीखूं। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न इवन फ्रॉम योर फेलियर्स। एंड फोर्थ इज डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। नहीं हुआ, आगे जाके आप सेंस ऑफ ह्यूमर, कुछ एक हॉबी ये आप रखिए, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट योर पेरेंट, ये भी जरूरी है।
1: थैंक यू सो मच मैम हमसे इतनी सारी बातें साझा करने के लिए और इतना कुछ कॉलेज के बारे में हमें जानने को मिला। और ये ओपन हाउस रख के जो आपने स्टूडेंट्स की क्वेरीज सॉल्व की ना, दैट इज रियली कमेंडेबल। एक ऐसे कॉलेज जो कि टॉप लेवल पर है, अभी इसकी NRF जो रैंकिंग है वो ऑलमोस्ट इंडिया के सेकेंड बेस्ट कॉलेजेस में है, उसके लिए एक ऐसे इनिशिएटिव लेना शायद एक बहुत बड़े दिल वाला कॉलेज ही कर सकता है।
20: थैंक यू सो मच रिचा, आपकी अप्रिसिएशन भी हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि अप्रिसिएशन से आदमी मोटिवेट होता है और फिर हम लोग और अच्छा काम करते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू यू।
2: क्या बात है, हर कॉलेज की अपनी अलग एक जर्नी रही है, हर कॉलेज की अपनी एक अलग हिस्ट्री रही है और साथ ही हर कॉलेज के पास अपना खुद का जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया भी है। लेगेसी के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ये हर कॉलेज जो है वो अपनाने की कोशिश करता है और यही कर रहा है मिरांडा हाउस भी। आज हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज मिरांडा हाउस में और हर बार इसी तरह हम आपके लिए समेट लाते हैं एक ऐसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उससे मिलवाते हैं आपको, सैर करवाते हैं आपको वहां के गलियारों की। आज का अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन था बस यहीं तक। अगले हफ्ते एक बार फिर से एक नए कॉलेज के साथ होंगे हाजिर। तब तक आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रिर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और यूएई के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 2029 के लिए दृष्टिपत्र जारी करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो मादक पदार्थ आयात से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्रून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएमकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तथा स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। खेदिन श्रीलेमा चानू कप्तान तथा निधि और एंगिल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। India has strongly objected to Pakistan raising the Kashmir issue at a United Nations forum, accusing Islamabad of politicizing the platform and also slammed it for misusing its position as co-chair instead of being unbiased as behoves the position. The remarks were made by India's permanent representative to the UN in New York, P. Harish, in response to comments by Pakistan's permanent representative, Asim Iftikhar Ahmed. Responding to Pakistan's intervention, Mr. Harish criticized the conduct of the co-chair and reiterated India's long-standing position on Jammu and Kashmir.
3: I also refer to the unwarranted remarks made by the representative of Pakistan. It is incredible that a co-chair expected to be balanced and unbiased in conduct has chosen to politicize this forum. I would only like to stress for brevity of time that the Union Territory of Jammu and Kashmir is a matter strictly internal to India. It has always been, is and will remain so.
2: The Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. In the light of recent positive developments and improvement in the overall situation, the embassy advised Indian nationals to contemplate about travelling to Iran. More from our correspondent.
4: Indian nationals are advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens currently residing in Iran, as well as those required to travel to Iran for unavoidable reasons, are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant, and maintain constant situational awareness. The embassy also urged them to closely follow local developments through credible sources and comply with instructions issued by local authorities. The embassy further advised all Indian nationals currently in Iran and those arriving in the country to register their particulars with the embassy at the earliest opportunity. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further advisories. Vishnu P.S., Akashwani News, Delhi.
2: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer and his delegation this morning. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both countries. In West Bengal, rescue operations have started after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Taratola in Kolkata today. Three persons were killed in the accident. Five injured persons are being treated in the SSKM hospital. State Minister for Urban Development and Municipal Affairs, Agnimitra Paul, has reached the accident spot. The NDRF, police, fire and emergency services and locals have joined the rescue work. Personnel of the disaster management group of the Kolkata police have also joined the rescue efforts. The India Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Similar weather conditions are expected to prevail over coastal Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 days. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Odisha, Telangana and West Bengal and Sikkim till the 29th of this month. The Met Department has also predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir and Ladakh till Saturday. Benchmark domestic equity indices rose around 1% today, supported by lower crude oil prices and value buying. The Sensex climbed 791 points to close at 76,991. The Nifty also added 198 points to settle at 24,022. Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand advanced to the second round of the US Open badminton tournament. The Indian duo defeated Spain's Paula Lopez and Lucia Rodriguez 21-12, 14-21, 21-13 in the opening round contest. In the men's singles qualifiers, Ronak Chauhan secured his place in the main draw with two victories. In the FIFA World Cup 2026, Colombia have qualified for the round of 32 after beating DR Congo 1-0 in their Group K match in Guadalajara, Mexico today. And with that, we end this news bulletin.
5: Shruta Hokale Huniase, Akahwani Guwahatir. প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈ আছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্টছত আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টছত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজি আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ বিভিন্ন দায়িত্বত আছে নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত অপূৰ্ব কৃষ্ণ বুঢ়াগোহাঁই, বিজয় দাস আৰু বিশ্বদেৱ স্বৰ্গীয়াৰী, ট্ৰান্সমিটাৰত ৰমেন কুমাৰ শৰ্মা আৰু মৃগাংক কৃষ্ণাত্ৰেয়, মাইক্ৰফোন তথা ডিউটি ৰুমৰ দায়িত্বত এয়া মই শ্ৰী বিপাংশী দাস শইকীয়া। শ্ৰোতাই আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ নিউজ অন AIR মোবাইল এপৰ জৰিয়তেও শুনিবলৈ পাৰিব। এতিয়া শুনক যুৱক যুৱতীসকলৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান যুৱবাণী।

0: শ্ৰোতাসকলে খন্তেক পিছতে শুনিবলৈ পাব দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে হোৱা বাতৰি ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिक

0: एकीकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्रे और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का एसएसकेएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. In West Bengal, rescue operations have started after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near

0: युद्धे पाकिस्तान देशेन कृत काश्मीर विषयक चर्चायां दृढ़तया आक्षेपः प्रकटितः। इस्लामाबादः अस्य मञ्चस्य राजनीतिकरणम् अकरोत् इति आक्षेपोऽपि कृतः। ईरान देशस्य परिष्कृत सुरक्षा स्थितिं वीक्ष्य तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पक्षतः भारतीय नागरिकाणां कृते एकः संशोधित सुरक्षा परामर्शः निर्गतः, यत्र हि अग्रिम सूचना पर्यन्तं अनावश्यक यात्रां वर्जयितुम् उपादिष्टम्। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डीआर कांगो देशम् 1-0 इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतेन संयुक्तराष्ट्रसंघस्य एकस्मिन् मञ्चे पाकिस्तान देशेन कृत काश्मीर विषयक चर्चायां दृढ़तया आक्षेपः प्रकटितः। इस्लामाबादः अस्य मञ्चस्य राजनीतिकरणम् अकरोत् इति आक्षेपोऽपि कृतः। अपि च सः अध्यक्षत्वेन स्वस्थानस्य दुरुपयोगाय अपि भारतेन कट्वालोचिता। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्रसंघस्य भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना पी हरीशेन पाकिस्तानस्य स्थायी प्रतिनिधिद्वारा असीम इफ्तिखार अहमद इत्यस्य वक्तव्यस्य प्रतिक्रिया रूपेण एषा टिप्पणी कृता।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: पाकिस्तानात् हस्तक्षेपस्य प्रतिक्रिया रूपेण श्रीहरीशः सह अध्यक्षस्य आचरणस्य निन्दाम् अकरोत्। जम्मू कश्मीर विषये भारतस्य दीर्घकालस्य स्थितिं पुनरुद्घाटयत् च। भारतीयः राजदूतः संयुक्तराष्ट्रसंघस्य 80 संरचनायाः अन्तर्गतस्य संयुक्तराष्ट्रसंघस्य आदेशानां वर्तमान समीक्षायाः विषये अपि अवदत्, यस्योद्देश्यं सम्पूर्ण संस्थायां कार्यक्षमतां वर्धयितुमस्ति। ईरान देशस्य परिष्कृत सुरक्षा स्थितिं वीक्ष्य तेहरान स्थित भारतीय दूतावास पक्षतः भारतीय नागरिकाणां कृते एकः संशोधितः सुरक्षा परामर्शः निर्गतः। देशस्य सकारात्मक परिवर्तनानि सामान्य स्थितिं च अवलोक्य दूतावासेन नागरिकाः ईरान प्रवास विषये विचारं कर्तुं सूचिताः, किन्तु साकमेव अग्रिम सूचना पर्यन्तं अनावश्यक यात्रां वर्जयितुम् अपि उपादिष्टम्। परामर्शानुसारं ये भारतीयाः सम्प्रति ईरान निवसन्ति अथवा केनापि अनिवार्य कारणेन तत्र गच्छन्तः सन्ति तेभ्यः उच्चस्तरीय अवधानतायाः वर्तितुं सतर्कं भवितुं तथा च परिस्थिति अनुकूल जागरूकतां धारयितुं निर्देशः प्रदत्तः। दूतावासेन सर्वे भारतीय नागरिकाः शीघ्रातिशीघ्रं दूतावासे स्वविवरणं पञ्जीकर्तुम् अपि निर्दिष्टाः। आपत्काले साहाय्यार्थं दूतावासेन एताः दूरभाष संख्याः निर्गताः। संख्या अस्ति 9891210915 9891210915। नागरिकाः cons.tehran@mea.gov.in इति ईमेल संकेते संपर्कं कर्तुं शक्नुवन्ति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य वर्तमान वैश्विक समाह्वानानां मध्ये भारत दक्षिण कोरिया देशयोः संबंधस्य सुदृढीकरणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् समान मूल्यवन्तः तथा परस्पर विश्वासयुताः देशाः सम्प्रति इतोपि निकटेन सहकार्यं कुर्युः। सियोलद् नगरे दक्षिण कोरियायाः विदेशमन्त्रिणा चो हुन इत्यनेन सह प्रवृत्तायां चर्चायाम् आरम्भिक भाषणे तेन प्रतिपादितं यत् वर्तमान अन्ताराष्ट्रिय स्थितिः विश्वसनीय सहयोगिनां मध्ये परस्पर सहयोगम् अनिवार्यं करोति।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए

0: एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: सामाजिक अंतर्जालीय माध्यमे एकेन सन्देशेन विदेश मन्त्रिणा सूचितं यत् उभौ द्वयोः देशयोः मध्ये राजनीतिक व्यापार निवेश रक्षा प्रौद्योगिकी स्वच्छ ऊर्जा संस्कृति परस्पर जनसंपर्क इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य समीक्षां विहितवन्तौ। अनेन सहैव नवाचारः वित्तीय प्रौद्योगिकी तथा च बहुपक्षीय मञ्चेषु उपलब्ध अवसरेषु अपि विस्तरेण चर्चा समजायत। तौ स्वस्व क्षेत्रस्य तथा च वैश्विक विकासस्य परिदृश्ये अपि विचाराणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय आवास एवं नगरीय कार्य मंत्री मनोहर लाल अद्य राष्ट्रीय राजधान्यां सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर इत्यस्य कृते केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्थान के निर्माण कार्यस्य औपचारिकम् उद्घाटनं कृतवान्। वार्ताहरैः सह संवादे मंत्री इमं क्षणम् ऐतिहासिकम् इति वर्णितवान्। तेन प्रख्यापितं यत् इयं परियोजना सर्वकारीय कर्मचारिणाम् अन्येषां च सर्वेषां वृत्तिजीविनां कृते दैनिक गमनागमनम् अत्यन्तं सुगमं सुव्यवस्थितं च करिष्यति, येन सम्पूर्ण देहली क्षेत्रे यात्रा इतोपि सरला क्षिप्रा कार्यकुशला च भविष्यति।
2: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है, जब देश की राजधानी जहाँ से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा, और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कम्प्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशंस है।
1: भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य कोंकण गोवा प्रदेशयोः अतिवृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। आगामी दिनद्वयोः तटीय कर्णाटक राज्ये मध्यप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भवितुमर्हति। अस्य मासस्य 31 दिनांकपर्यन्तं मेघालये, आन्तरिक कर्णाटके, ओडिशायां, तेलंगानायां, पश्चिमबंगप्रदेशे, सिक्किमराज्ये च प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानं प्रकटितम्। ऋतुविभागेन दिल्ली, हरियाणा, चण्डीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इत्येतेषु प्रदेशेषु शनिवासरपर्यन्तं मेघगर्जनेन विद्युद्योतनेन सह झंझावातस्य च पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अंडमान निकोबार द्वीपेषु, आंध्र प्रदेशे, बिहारे, गुजराते, झारखंडे, केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे, लक्षद्वीपे, मध्य प्रदेशे, महाराष्ट्रे, ओडिशायां, पश्चिमी उत्तर प्रदेशे च शनिवासर पर्यन्तं एतादृशी स्थिति अपेक्षते। हॉकी इंडिया संस्था अद्य आगामी यूनाइटेड किंगडम प्रवासार्थं 24 सदस्यानां कनिष्ठ महिला हॉकी दलस्य उद्घोषणाम् अकरोत्। अयं प्रवासः जुलाई मासस्य 5 दिनांकादारभ्य 14 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। नूतन प्रशिक्षकस्य टिम वाइट इत्यस्य निर्देशने भारतीय दलं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड देशयोः विभिन्न स्थानेषु 7 द्वन्द्वान् क्रीडिष्यति, यत् आगामि कनिष्ठ एशिया कप इत्यादि अन्ताराष्ट्रिय प्रतियोगितानां सिद्धतायै एक्सपोजर टूर रूपेण अस्ति। अस्य युवा दलस्य नेतृत्वं दलनायिका खैदेम सिलैमा चानू करिष्यति। अस्य वर्षस्य फीफा विश्वकप क्रीडायां कोलंबिया देशः अद्य मैक्सिको देशस्य ग्वाडलहारा नगरे ग्रुप के क्रीडायां डी आर कांगो देशं 1-0 इत्यनेन अंकेन पराजित्य राउंड ऑफ 32 इत्यस्मिन् प्रविष्टः। इतः पूर्वं संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य ह्यूस्टन नगरे ग्रुप के इत्यत्र पुर्तगाल देशः उज्बेकिस्तान देशं 5-0 पराजयत। इति वार्ताः।
3: প্ৰিয় শ্ৰোতা, বাতৰিৰ পাছতে পুনৰ উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত, 1035 কিলোহাৰ্জ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। এইবাৰ আগবঢ়াবলৈ লৈছো টিকুমণি হুজুৰীৰ কণ্ঠত ভজন।

0: ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नैनी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सैमसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Three people have died after a devastating roof collapse of an under-construction godown at Taratala area of Kolkata today. Contact has been established with the trapped people inside the debris, and water and oxygen have been provided by the rescue team. Efforts are underway to rescue them. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari visited the spot and inspected the site. He informed the media a report would be prepared by the Kolkata Municipal Corporation on the incident. He said a detailed information would be provided involving the Taratala accident tomorrow in the assembly. In Arunachal Pradesh, heavy rainfall and flash floods have caused widespread damage today at Nipko Colony in Bosa Yazili and Cape and Yor district. Authorities are assessing the extent of the damage and further details are awaited. The district administration said a woman was initially reportedly missing, while the latest reports indicate that three persons are unaccounted for. Authorities have not yet confirmed any casualty. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with US Trade Representative Ambassador Jamieson Greer and his delegation in New Delhi this morning. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-US trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Director of National Security of South Korea, Wei Sung-lak, this evening. In a social media post, the minister said that they had a useful exchange of strategic assessments on global developments and the Indo-Pacific. Earlier today, Dr. Jaishankar highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Cho Yun in Seoul, he stressed that the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever. Oman has announced the opening of a temporary maritime corridor through the strategically vital Strait of Hormuz. It marked a significant step towards restoring commercial shipping and easing a maritime crisis that has left thousands of seafarers stranded in the Gulf. The Omani government said the initiative was developed in coordination with the UN International Maritime Organization, or IMO, to facilitate the safe movement of vessels through the waterway following months of disruption linked to regional conflict. Meanwhile, the Indian Embassy in Tehran has issued a revised advisory for Indian nationals in view of the improving security situation in the country. In the light of recent developments and improvement in overall situation, the embassy, however, advised Indian nationals to contemplate about traveling to Iran. More from our correspondent.
3: Indian nationals are advised to continue to avoid all non-essential travel to Iran until further notice. The embassy said Indian citizens currently residing in Iran, as well as those required to travel to Iran for unavoidable reasons, are advised to exercise a high degree of caution, remain vigilant, and maintain constant situational awareness. The embassy also urged them to closely follow local developments through credible sources and comply with instructions issued by local authorities. The embassy further advised all Indian nationals currently in Iran and those arriving in the country to register their particulars with the embassy at the earliest opportunity. It also urged them to regularly monitor the embassy's official website and social media platforms for updates and further advisories. Vishnu PS, Akashvani News, Delhi.
2: India and Russia are working to further enhance their bilateral trade with a target of reaching $100 billion by 2030. Speaking at the 12th Primakov Readings Forum in Moscow, Kremlin spokesman Dmitry Peskov described India as one of the world's fastest growing economies and highlighted its vast potential. He also termed the India-Russia relationship as a privileged partnership strengthened through cooperation in various international organizations. IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Konkan and Goa today. Similar weather conditions are expected to prevail over coastal Karnataka and Madhya Maharashtra during the next 2 days. The weather agency has forecast heavy rainfall in northeast India as well. In the FIFA World Cup, Canada will take on Switzerland in Group B match at Vancouver in Canada tonight at 12:30 a.m. Indian Standard Time. In another Group B fixture, Bosnia and Herzegovina will face Qatar at Seattle Stadium in Washington. And that is the end of this news bulletin.
4: AR Akahvani. বাতৰি পঢ়িছো গায়ত্ৰী শৰ্মা চক্ৰৱৰ্তীয়ে। আজিৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহত আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ অধীনত ত্ৰিপুৰাত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 211 কোটি টকাৰ অনুমোদন জনোৱা হৈছে, বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ডঃ এছ জয়শংকৰে আজি সন্ধিয়া দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সঞ্চালক উই চুং লেকক সাক্ষাৎ কৰে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত নাৰ্কো কোঅৰ্ডিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ 10ম শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰিব, কলকাতাৰ তৰাতালাত নিৰ্মাণ এটা গুদাম ভাঙি পৰাত 3 লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 5 লোক আহত হয়, আৰু US অপেন ছুপাৰ 300 বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় মহিলা ডাবলছৰ যুটিলৈ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2026-27 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা চতুৰ্থৰ অধীনত ত্ৰিপুৰাত 96

चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरं एकैक मक्षरं पुंसाम महापातक नाशनम्। श्रीराम शब्द के उच्चारण मात्र से पापों के बीमारियों के बड़े से बड़े संकट कट जाते हैं, क्योंकि राम नाम में असीम ऊर्जा है। इसलिए पाप इसके सम्मुख ठहर ही नहीं सकता। भाव कुभाव आलस्य से भी लिया गया राम नाम मोक्षदायी होता है। राम नाम में असीम शक्ति है। राम शब्द के दोनों अक्षर रा व मा नर और नारायण की नीति सुंदर बंधु हैं। रा कहने से शरीर से पापों का समूह निकल जाता है, व मा कहते ही पापों व बीमारियों का समूह पुनः वापस नहीं आता। मनुष्य को जितना सुख और आनंद तीर्थों मंदिरों धामों आदि के दर्शन पूजन और दान दक्षिणा से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक राम नाम के बारंबार स्मरण और उच्चारण मात्र से प्राप्त हो जाता है। राम नाम ऐसा महामंत्र है जिसे देवाधिदेव महादेव हमेशा जपते रहते हैं। आपदाम पहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। आपत्तियों को हरने वाले तथा सब प्रकार संपत्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री राम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। राम की महिमा अपरंपार है। राम मोक्षदायी हैं, परम आनंद के देने वाले हैं।

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতেই অন্ত পৰিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আপোনালোকে শুনি আছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পিছতে অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 News@9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সে সমাচাৰ সন্ধ্যা কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: It is clearly our responsibility.
3: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
1: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
4: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्थानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
5: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
1: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
6: We had 26 delegates from
7: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देशभर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
8: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, NDRF, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजागी स्थित पोसा में मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
9: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरी और कवरत्ती दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ती पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
10: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर ₹94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।